दिल चोरी हो या डेटा लीक, 2026 में कुछ भी सेफ नहीं है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका, और तूने तो चोरी किया रे जिया।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
2: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
1: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
3: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
4: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
3: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
4: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
5: पीठ पे छुरा क्यों घोंपे?
6: मत मारे कालीन भैया,
5: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
7: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
8: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
5: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
8: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
9: XL Entertainment presents Mirzapur the Movie, releasing worldwide on 4th September at your nearest cinema.
10: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
11: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
12: अब मिर्ची खा।
14: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
15: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो।

स्टोरीज काउंट मत करो, रिग्रेट्स मंडे को शेड्यूल करो, और जो लोग मैं सिर्फ एक गाना सुन के सो जाऊंगा बोलते हैं उनपे कभी भरोसा मत करो। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन विद यू टुनाइट ऑन क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
2: जिसके शब्दों में आग है,
1: जिसकी आवाज में जादू है,
2: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
1: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
2: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
2: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, assisting first time home buyers, also offering zero closing cost refinance option. For more information, call 732-339-3155. Log on to lionmtg.com.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
9: अब मिर्ची खा।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
12: Ladies and gentlemen.

पर्सनल सबको पीस चाहिए, पर व्हाट्सएप ग्रुप म्यूट करने की हिम्मत किसी में नहीं है। मुझ में है यार, दीदी शेरे बलोच है, ठीक है, और आपकी खातिर यहाँ पे बैठी है विथ क्लब मैची।

Rave is the future.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: छुरा क्यों घोंपे?
2: मत मारे कालीन भैया, बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
3: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
4: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
1: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
4: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
5: XL Entertainment presents मिर्जापुर द मूवी, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड ऑन 4th September at your nearest cinema.
6: No!
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
8: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड।

बात जा रही है क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। बॉलीवुड रोमांस वापस आ गया है, रियल लाइफ में बस टाइपिंग ही चल रहा है। चलो उसी रोमांस को थोड़ा जी ले, रंग दे तू मोहे।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: कभी न्यू जर्सी की स्ट्रीट पर,
2: कभी बाथरूम की चार दीवारों के बीच,
1: कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच छुपे होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं. द स्टेज इज सेट,
2: द माइक इज रेडी. आर यू इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक. अभी रजिस्टर करें, व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए 9033647244 पर. ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन.
3: लेडीज एंड जेंटलमैन,

साथ मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो. उनसे कहा एक दिन सब ठीक होगा, बस वाईफाई स्ट्रॉन्ग हो जाए, इतनी ही ख्वाहिश है. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो. उनसे कहा एंड इफ योर वाईफाई इज स्ट्रॉन्ग कैच अस ऑन सोशल मीडिया डीजे रिचर्ड ऑफिशियल एंड ऑयो. उनसे कहा AYANTIKA.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है,

0: एक इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ, व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
0: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.
3: Tera kya hoga, Kalia?
4: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
3: Ab Mirchi kha.
5: Radio Mirchi, it's hot.

0: deep into the human heart.
1: Welcome back. स्वागत है क्लब मिर्ची जारी है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। यार मुझे ऐसा लगता है कि जब इश्क का बुलावा आता है लोग शादी के लिए नहीं शादी में मिलने वाली बुफे के लिए ज्यादा एक्साइटेड होते हैं।

दिल का जो हाल है वो इंस्टा स्टोरी पे डाल दो यार। लव मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका, सबको पता तो चले कि हम प्यार करने वाले हैं।

मैसेज का रिप्लाई देना जरूरी नहीं, कभी कभी सीन भी एक कंप्लीट पैराग्राफ होती है। डीजे मिर्ची और योंतिका आपके साथ ऑन क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: Radio Mirchi, it's hot.
4: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच,
2: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
3: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
5: रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
6: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

काउंट मत करो, रिग्रेट्स मंडे को शेड्यूल करो, और जो लोग मैं सिर्फ एक गाना सुन के सो जाऊंगा बोलते हैं उन पे कभी भरोसा मत करो। DJ Richard and Mirchi, all you on the go with you tonight on Club Mirchi.

साथ आप सुन रहे थे वाइब्स जो न्यूज से ज्यादा रियल और मीम्स से ज्यादा रिलेटेबल है। नेक्स्ट वीकेंड फिर से मिलेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिल्मी, ओवर एंड आउट। बट दिस इज योर साइन ऑफ ट्रैक, इट्स कॉल्ड लैबरिंथ बाय टाउनशिप रिबेलियन।

वेल, आज का मूड फुल पावर जैसे पेट्रोल प्राइस का ग्राफ, बस हम ऊपर जाके खुश हो रहे हैं। क्लब मिर्ची शुरू हो गया विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंटिका। आप सुनोगे वो बीट्स जो पार्लियामेंट डिबेट से ज्यादा हीटेड है। सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि आज गाने भी रॉक करेंगे, बिकॉज वी आर हियर टू रॉक यू।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक.
0: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक.
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ. व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची.
0: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Listener MA, back to back gana sunega.
4: Back to back gana sunega.
3: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are gonna go. We are-

0: रामबन डेले स्पेड पे नहीं उगते, हमें बनाना पड़ता है।
1: छोरी कहा छोरे से दंगे लड़वाओगे भाई? आपको अपनी इज्जत करी ना तो ना सी, हमने अपनी इज्जत बहुत करी है भाई।
2: हमारी छोरियां छोरों से कम है।

बैक जारी है क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। बॉलीवुड रोमांस वापस आ गया है, रियल लाइफ में बस टाइपिंग ही चल रहा है। चलो उसी रोमांस को थोड़ा जी ले, रंग दे तू मोहे।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक.
0: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक.
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ. व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची.
0: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Ladies and gentlemen.

मतलब मिर्ची जा रही है वो डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। एआई इतना स्मार्ट हो गया पर मम्मी का खाना खा लिया रिमाइंडर स्टिल इज अनडिफीटेड, इसीलिए तेरे बिना बेसुआदी बेसुआदी जीवन।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: Radio Mirchi, it's hot.
4: Ladies and gentlemen, we are gonna go.
5: On a ride.

कैलोरीज काउंट मत करो, रिग्रेट्स मंडे को शेड्यूल करो, और जो लोग मैं सिर्फ एक गाना सुन के सो जाऊंगा बोलते हैं उनपे कभी भरोसा मत करो। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन विथ यू टुनाइट ऑन क्लब मिर्ची।

के साथ लाइफ का फंडा सिंपल हो रहा है, जो होगा देखा जाएगा। क्लब मिर्ची विद डीजे मिर्ची, मिर्ची ऑन योर दिखा, बस ईएमआई टाइम पे भरना है, इसीलिए बाकी सब कुछ केसर।

चोरी हो या डेटा लीक, 2026 में कुछ भी सेफ नहीं है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका, और तूने तो चोरी किया रे जिया।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

कैलोरीज काउंट मत करो, रिग्रेट्स मंडे को शेड्यूल करो, और जो लोग मैं सिर्फ एक गाना सुन के सो जाऊंगा बोलते हैं उन पे कभी भरोसा मत करो। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन क्लब मिर्ची।

साथ लाइफ का फंडा सिंपल हो रहा है, जो होगा देखा जाएगा। क्लब मिर्ची विद डीजे मिर्ची, एडन मिर्ची, ओयोंदिका, बस ईएमआई टाइम पे भरना है, इसीलिए बाकी सब कुछ केसर।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
2: जिसके शब्दों में आग है,
1: जिसकी आवाज में जादू है,
2: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
1: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
6: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
7: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: साथ जीतू राज, only on Mirchi. It's hot.
2: ओ यार मिर्जापुर आ गई, मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतुराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतुराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करें, कभी कभार तो ऐसे लगा है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर, आए एट मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
1: साथ जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

तेरा बस लगता गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक को ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

वेलकम बैक, जारी है क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। बॉलीवुड रोमांस वापस आ गया है, रियल लाइफ में बस टाइपिंग ही चल रहा है। चलो उसी रोमांस को थोड़ा जी ले, रंग दे तू।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
2: जिसके शब्दों में आग है,
1: जिसकी आवाज में जादू है,
2: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
1: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
3: अब

आप मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल, उनका एक दिन सब ठीक होगा, बस वाईफाई स्ट्रॉन्ग हो जाए इतनी ही ख्वाहिश है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल उनका। एंड इफ योर वाईफाई इज स्ट्रॉन्ग, कैच अस ऑन सोशल मीडिया, डीजे रिचर्ड ऑफिशियल एंड ऑयल उनका, AYANTIKA।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक.
0: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक.
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ. व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची.
0: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
4: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
3: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
5: Ise apni jeb mein rakh le Peter. Ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
3: Moral of the story? नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है.
3: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
7: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: to the human heart.
1: Welcome back. स्वागत है क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। यार मुझे ऐसा लगता है कि जब इश्क का बुलावा आता है लोग शादी के लिए नहीं शादी में मिलने वाली बुफे के लिए ज्यादा एक्साइटेड होते हैं।

मैसेज का रिप्लाई देना जरूरी नहीं, कभी कभी सीन भी एक कंप्लीट पैराग्राफ होती है। डीजे मिर्ची और योंतिका आपके साथ ऑन क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: कभी न्यू जर्सी की स्ट्रीट पर,
2: कभी बाथरूम की चार दीवारों के बीच,
1: कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच,

0: छुपे होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं. द स्टेज इज सेट,
1: द माइक इज रेडी. आर यू Indian American Women Entrepreneurs Association presents Mirchi Hot Mic. अभी register करें. WhatsApp पर लिखिए Hot Mic और भेजिए 9033647244 पर. Grand Finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison. Radio Mirchi is hot.
2: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
3: Ladies and gentlemen.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi Bioscope. Saad Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
2: ओ यार मिर्जापुर आ गई, मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतुराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतुराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। हैं ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे। कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखाओ और अपनी कितनी मिर्ची आए वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतुराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
1: जीतुराज। Only on Mirchi, it's hot.

आपके साथ आप सुन रहे थे वाइब्स जो न्यूज से ज्यादा रियल और मीम्स से ज्यादा रिलेटेबल है। नेक्स्ट वीकेंड फिर से मिलेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिल्मी, ओवर एंड आउट। बट दिस इज योर साइन ऑफ ट्रैक। इट्स कॉल्ड लैबरिंथ बाय टाउनशिप रिबेलियन।

कैलोरीज काउंट मत करो, रिग्रेट्स मंडे को शेड्यूल करो, और जो लोग मैं सिर्फ एक गाना सुन के सो जाऊंगा बोलते हैं उनपे कभी भरोसा मत करो। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन विथ यू टुनाइट ऑन क्लब मिर्ची।

उम्र के साथ लाइफ का फंडा सिंपल हो रहा है, जो होगा देखा जाएगा। क्लब मिर्ची विद डीजे मिर्ची, एडन मिर्ची, ओयोंदिका, बस ईएमआई टाइम पे भरना है, इसीलिए बाकी सब कुछ।

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: रेडियो मिर्ची के साथ
5: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Hurry up, Mirchi. Radio Mirchi, it's
4: hot. 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ई का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया।

0: पंकज त्रिपाठी फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतू राज। समझे कि नहीं समझे, सही है
1: FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
2: मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का अपना विशेष महत्व है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस महत्व को समझ कुछ विशेष मंत्रों, श्लोकों एवं प्रार्थनाओं की रचना इस उद्देश्य से की थी कि मनुष्य जीवन की जटिलताओं के बीच अपने जीवन पथ को सहज सरल बना सके, अपने आराध्य और अपने बीच की दूरी मिटा सके। हिमालयन चांट्स में संग्रहित श्लोक एवं प्रार्थनाओं को आपने विभिन्न धार्मिक आयोजनों के अवसरों पर घर परिवार में नियमित पूजा पाठ के लिए अवश्य ही सुना होगा। इनके द्वारा पढ़ने वाले मन मस्तिष्क पर प्रभाव का अनुभव भी किया होगा। प्रत्येक घर परिवार के लिए ये एल्बम निश्चित रूप से संग्रहणीय, उपयोगी एवं धार्मिक रुचि पैदा कर घर में भक्तिभाव पूर्ण वातावरण का निर्माण करने में सक्षम है। श्रद्धा भक्ति के साथ सस्वर उच्चारित श्लोकों एवं प्रार्थनाओं का ये संगीतमय संग्रह श्रद्धालु सज्जनों को आत्मिक संतोष प्रदान करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है।

0: और सुनता है सब की करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: लाइफ में हमेशा ऐसे मौके तलाशिए जो आपको चैलेंज करने और ग्रो करने का मौका दें। आइए इस सोच को समझते हैं।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
2: तो कई बार हमने डिस्कस किया कि आलस्य जो है वो एक किसी गहरी बात का लक्षण भी होता है। कभी कभी वो फियर को, आत्मसम्मान को, लो कॉन्फिडेंस को, सेल्फ डाउट को भी मास्क करता है। और मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो बहुत खूबसूरत सी बात निकल के आई जिसको हम बहुत बार ओवरलुक करते हैं। कई बार ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स को छुपा रहा होता है, और जब मैं पढ़ रहा था तो एक पूरी इतनी बड़ी लिस्ट आई कि मैं घबरा गया। स्लीप डिसऑर्डर को छुपा रहा होता है। कई बार हम ठीक से नहीं सो पाते हैं तो हम थोड़े से लेजी हो जाते हैं, क्योंकि ठीक से नींद नहीं आई तो सुबह हमको आलस रहता है, हम उठना नहीं चाहते। और स्लीप डिसऑर्डर बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में। स्लीप एपनिया, स्लीप डिसऑर्डर बहुत बढ़ रहा है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर को भी छुपा रहा होता है। बहुत लोग एंग्शियस होते हैं और हमको लगता है वो लेजी हैं। कुछ लोग डिप्रेसिव है, जिसके बारे में हमने बात किया, जिसके कारण लैक ऑफ एनर्जी होती है। कुछ लोग हैं उनको ADHD होता है, और ADHD में मेरे एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो उसको ये डेफिशिएंसी है, और वो कहते हैं कभी बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं और कभी बहुत लो फेजिज्म चले जाते हैं। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी जो बेटी है वो ऑटिस्टिक चाइल्ड है। तो ऑटिज्म में भी जो व्यक्ति दूसरों के साथ व्यवहार सही दिशा में नहीं, प्रभावित उनके जो धारणा होती है वो प्रभावित होती है, और सामाजिक संपर्क है, सोशल कनेक्शन जो वो उस तरह से नहीं बन पाते हैं जो नॉर्मली बनते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको लेजीनेस इस वजह से होता है क्योंकि उनको लगता है कि मेरा जो एनवायरमेंट है वो चैलेंजिंग नहीं है। इसलिए अगर आपको याद हो, पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि एक बच्चा इतना ब्रिलियंट होता था कि उसको क्लास 2 के बाद डबल प्रमोशन देके क्लास 4 या 5 में भी भेज दिया जाता था। आजकल ऐसा नहीं होता। तो उनको लगता है कि मेरा जो एनवायरमेंट है वो इतना चैलेंजिंग नहीं है, मैं इनसे परे हूँ, मैं इनसे ऊपर हूँ, इसलिए भी वो आलस्य का या लेजीनेस का बहाना लेते हैं। ऐसे केस में अगर आप ऐसे बच्चे से डील कर रहे हो तो क्या करना चाहिए?
3: हमें बहाना देने छोड़ देने चाहिए। You know, we're always looking for excuses. ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है it is not challenging, it may not be challenging in the school. लेकिन अभी तो बहुत opportunities है हमारे पास. आज हमारे पास कितना कोई व्यक्ति हम देखते हैं, आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं वो कोई स्पोर्ट में देखते हैं तो बहुत, जैसे चेस जैसा है उसमें बहुत आगे निकल जाते हैं, कोई किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बहुत अच्छा निकल जाता है, कोई मैथ विज जैसा कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, एक जगह पर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी जो आपको चैलेंज करती है। कोई तो अपॉर्चुनिटी होगी जो आपको चैलेंज करती है। सो आई थिंक एक्सक्यूज देना भी एक लेजीनेस है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा।
4: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
2: एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट और कंपैशन हर इंसान की बेसिक इमोशनल नीड्स होती हैं। आइए इन नीड्स को गहराई से समझते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: लेकिन सिस्टर, आई टेल यू, मैं जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, मेरा कजन है, मेरे चाचा का बेटा, वो लिटरली वो जीनियस है, बहुत बहुत तेज दिमाग और बहुत आगे बढ़ गया था। और बचपन में उसको एक थोड़ी सुनने की डिफेक्ट थी, तो वो सुनता भी उसको कम था, और धीरे धीरे वो सोशली डिस्कनेक्ट होने लग गया। उससे जब भी हम बात करते थे और आज तक जब हम बात करते हैं, जो मिलता है वो कहता है आपसे बात करने क्या फायदा, आपको समझ में तो आएगा नहीं जो मैं बोलूंगा। तो कहीं ना कहीं शायद उसको बचपन में इतना आइसोलेशन हो गया था, क्योंकि थोड़ा कम सुनता था उसको, थोड़ा अलग दिशा में निकल गया, जीनियस था, आज भी है, बहुत शार्प है, तो उसको लगने लगा कि मेरी बात लोगों को समझ में नहीं आती। और वो फील्ड में भी ऐसा चला गया, बहुत टेक्निकल फील्ड थी, तो वो जो बातें करता था उसके जो एग्जांपल्स होते हम नहीं समझ पाते थे। तो ऐसे बच्चे तो होते ही हैं, बहुत बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बट उनकी बातें हमें नहीं समझ में आती हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ कैसे बात करें, कैसे हैंडल करें उन्हें?
5: किसी को तो समझ में आती होगी ना।
4: हाँ, मेरे पापा उससे बहुत बात कर पाते थे, मेरे पापा मैकेनिकल इंजीनियर है और वो इंजीनियरिंग की फील्ड में गया।
5: मैं समझती हूँ हर व्यक्ति को एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट चाहिए होती है।
4: जी हाँ, बहुत बड़ी बात है, एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट
5: हर व्यक्ति को चाहिए होती है। अब कभी कभी हमें वो व्यक्ति क्योंकि हमारे अनुसार नहीं होता तो हमें अजीब लगता है, हमें स्ट्रेंज लगता है, हम कहते हैं ये कैसी बातें करते हैं, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। नो, देयर आर थिंग्स व्हिच आई कांट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आती, तो मुझे सामने वाला अजीब और स्ट्रेंज लगता है।
4: जी,
5: लेकिन सामने वाले को एक्सेप्टेंस चाहिए, व्हिच वी यू नो वी समटाइम्स से कि हम उसको एक्सेप्ट करें इवन दो वी डोंट अग्री विद देम। समझो उसकी कोई बात है भी जो आप उसके साथ अग्री नहीं करते हैं, आपको नहीं ठीक लगता है, पर उसके पर्सपेक्टिव को तो हम एक्सेप्ट करते हैं। आज किसी को भी आप एक्सेप्ट करते हैं या थोड़ी सी रिस्पेक्ट देते हैं, वो अपनी बात जरूर कहता है। नहीं समझ में आ रही है का मतलब क्या है, शायद हम उसको कोई उसमें राय नहीं दे सकते या ओपिनियन नहीं दे सकते या और उसको मदद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उस चीज की एक्सपर्टीज नहीं है।
4: बिल्कुल।
5: पर वो हो गया स्किल बेस्ड।
4: जी।
5: लेकिन इमोशनल लेवल पर कॉन्वर्सेशन क्या होती है, सुनना। कॉन्वर्सेशन क्या है, मैंने आपकी जो बात है उसको सुना, आपने मेरी बात को सुना, आपने मेरी बात का सम्मान किया, मैंने आपकी बात का सम्मान किया। बेसिकली पहले तो क्या होता था, ये लाइफ स्टाइल बहुत कॉमन था।
4: जी।
5: घर के बाहर सब बैठे होते थे लोग।
4: बिल्कुल।
5: एंड दे वर जस्ट लिसनिंग टू ईच अदर, यू नो व्हेन वी वर लिसनिंग टू ईच अदर एंजाइटी, पैनिक अटैक एंड डिप्रेशन वर नॉट सो कॉमन।
4: आपने बहुत खूबसूरत बात कही, बेसिकली आप कह रहे हैं कि AR जो होता है वो हमेशा रहमान नहीं होता। A फॉर एक्सेप्ट और R फॉर रिस्पेक्ट। एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट अगर आप दें सबको तो शायद कहीं ना कहीं वो आपसे ज्यादा जुड़ेंगे, अलग नहीं होंगे।
5: सबको यही चाहिए, सबको यही चाहिए, एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड, ह्यूमन इमोशनल लेवल पर आपको एक्सेप्टेंस चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, कंपैशन चाहिए, तीन चीजें ही चाहिए।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

इट्स हॉट। हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: कभी कभी लेजीनेस धीरे धीरे हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है, जिससे हम चैलेंजेस से बचने लगते हैं। आइए समझते हैं कैसे।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक और बात है कि कभी कभी लेजीनेस जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म का भी काम लेता है। वो कभी कभी अवॉइडेंस बिहेवियर इसलिए होता है क्योंकि हमने बात की कि वो एक फियर को मास्क कर रहा होता है किसी चीज को, तो वो धीरे धीरे हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है। अगर मैं मुझे लगता है कि ये काम से मैं डरता हूँ या इस चीज से मैं डरता हूँ, तो उससे हम भागने लग जाते हैं और हमको लगता है कि नहीं, अगर मैं करूँगा ना तो मैं गिर जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो हम उसको अवॉइड करते हैं। तो धीरे धीरे वो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बनने लग जाता है कि जब ये फेल होना ही है, मुझे इससे डर लगता ही है, तो मैं क्यों करूं, मुझे करने की जरूरत नहीं है। अब ये बोल नहीं पाता बच्चा या बोल नहीं पाता इंसान, इसलिए वो दूसरों को लगता है कि ये लेजी है, लेकिन दरअसल वो कोप कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि नहीं, मुझे अवॉइड इसलिए करना है कि मुझे आता ही नहीं है, तो इसलिए सामने वाले बोल दो मैं लेजी हूं, हाँ मुझसे नहीं होता। तो ऐसे बच्चे के साथ कैसे या ऐसे इंसान के साथ कैसे हैंडल किया जाए?
4: इनकरेज करना चाहिए कि फेलियर कोई बड़ी चीज नहीं है।
3: हाँ, हमारे देश में तो ये बहुत बड़ी चीज है।
4: सिस्टम के अंदर फेलियर को बहुत बड़ा किया जाता है, जबकि हम ये भी कहते हैं कि कोई सफल व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो फेल ना हुआ हो।
3: बिल्कुल।
4: हम उन सफल व्यक्तियों की कहानियां भी बहुत सुनाते हैं कि 100 बार फेल हुए फिर हाँ। उन्होंने ये रिजल्ट दिया।
3: लेकिन हमारे घर में फेलियर नहीं होना चाहिए।
4: वरना जैसे किसी का बच्चा शहीद हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा बच्चा शहीद हो वो चीज हमें एक्सेप्ट नहीं होती। इट्स एन एक्सट्रीम एग्जांपल, बट ये है कि समवेयर आई अंडरस्टैंड आल्सो कि मिस्टेक होना, गलती होना या फेलियर होना, ये सब पार्ट ऑफ द लाइफ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फेलियर एक इवेंट होता है, पर्सन नहीं होता। अब जिस व्यक्ति की आप बात बता रहे हैं कि वो उसको डिफेंस मैकेनिज्म ले रहा है, वो सोचता है कि अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो वो एक इवेंट नहीं है, वो मैं हूँ, और इसीलिए वो मैं को सेफ करने के लिए, सिक्योर करने के लिए सोचता है वो चीज मैं करूं ही नहीं। कुड बी एज सिंपल एज पब्लिक स्पीकिंग।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
1: अगर फियर ही आपके आलस का असली कारण है तो उस फियर को पहचानना बहुत जरूरी है। आइए इस पर बात करते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: बिल्कुल। तो ये जो इससे गुजर रहे हैं, वो इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ इमोशन या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके ऐसे बिहेवियर की साइकिल को तोड़ा कैसे जाए?
4: जो उनको किस चीज का फियर है, क्योंकि यहाँ पर मेन चीज है फियर है।
3: जी बिल्कुल।
4: फियर फेल

0: फियर का है, फियर पब्लिक स्पीकिंग का है, फियर किसी व्यक्ति का है, तो वो जो फियर पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. फियर इज अ वेरी ब्रॉड टर्म.
1: बिल्कुल.
0: अभी उसमें किस चीज का फियर है उसको आइडेंटिफाई करना. अगर फेलियर का है, फॉर एग्जांपल फेलियर का है, तो अपने को कहना कोई बड़ी बात है ही नहीं. फेलियर तो आप कितना भी कर लेना, हम अपना 100% भी दे दें, तो भी जरूरी नहीं है कि वी विल सक्सीड इन दैट. एंड दैट टाइम ऑल्सो वो फेलियर कुछ नहीं कर रहा होता, इट इज साइलेंटली टेलिंग यू टू मूव इन अनदर डायरेक्शन.
1: बिल्कुल.
0: यूनिवर्स आपको साइलेंटली कह रहा होता है मे बी अभी दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ने की जरूरत है इफ दिस इज नॉट वर्किंग. सो यू नो लॉट ऑफ थिंग्स हाउ यू लुक एट थिंग्स इन द वर्ल्ड. जैसे आप, आपके लिए फेलियर क्या है, आपके लिए गलती करना क्या है, आपके लिए, अब जैसे किसी के लिए अगर एक दरवाजा बंद होता है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं
1: जी.
0: किसी के लिए एक दरवाजा बंद होता है तो कहते हैं कोई बात नहीं, एक बंद हुआ
1: दूसरा खुल जाएगा,
0: दूसरा खुल जाएगा. माइंडसेट है बहुत ज्यादा इसके अंदर, हमारा माइंडसेट है. तो फेलियर भी एक माइंडसेट है. आपने कोई ऐसा देखा जो कभी फेल ना हुआ हो?
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं. लेकिन फिर भी किसी ना किसी कारण से सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, इसके वीडियोस देखते हैं हम, बट जब फेलियर आता है तो उसको हैंडल करने के लिए आसपास को खड़ा नहीं होता.
0: हमें क्यों आसपास कोई चाहिए? आसपास वाले अगर सारे भी कहने लगे कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देन ऑल्सो इट डजंट मेक अ डिफरेंस एज लॉन्ग एज आप नहीं अपने को कहते कोई बात नहीं, इस सीन ने मुझे क्या सिखाया
1: जी,
0: ये मेरे लिए कैसे अनुभव बना, व्हाट हैव आई लर्नड फ्रॉम दिस. तूफान तोहफा बनाए.
1: अरे वाह क्या बात है.
0: है तूफान लेकिन उसको तोहफा तो बना सकते
1: हैं
0: ना.
1: बहुत बढ़िया.
0: देखो कोई भी चीज से जब हम सीख लेते हैं ना तो वो सुखदाई बन जाती है. जब तक हम उससे सीखते नहीं है वो दर्द का कारण बनती है, लेकिन एक बार अगर हम उससे सीख जाते हैं. आई थिंक आई रिमेम्बर आप ही एक बार बता रहे थे कि आपने किसी में इन्वेस्ट किया था
1: जी,
0: कोई बिजनेस किया था
1: जी,
0: लेकिन वो फेल हो गया था, बट यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट.
1: बिल्कुल.
0: तो वो देखने में लगेगा फेलियर है पर एक्चुअली वो फेलियर नहीं है क्योंकि उससे आप इवॉल्व हुए.
1: वो हाइंडसाइट में पता चलता है.
0: चलो हमने हाइंडसाइट में सीखा, लेकिन अगर आज कोई कॉन्वर्सेशन सुन रहा है तो वो इस चीज को समझ सकता है कि हमारे जीवन की हर सीन, हर एपिसोड हमें ग्रो करती है.
1: बिल्कुल.
0: हम इवॉल्व होते हैं, इसलिए इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू सिट इन साइलेंस. अच्छा इसने मुझे क्या सिखाया? दर्द में नहीं जाए. मेरे साथ ऐसा हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा. व्हाट डिड आई लर्न? And when we know better, we do better. It
1: Absolutely.
0: Is as simple as that. When we know better, we do better.
2: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
3: हो पाएगा कौन बोला

0: morning, only on Mirchi. It's hot. Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: हमारे शब्दों की एनर्जी भी हमारी विल पावर और माइंडसेट को अफेक्ट करती है। आइए समझते हैं कैसे।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक मुझे याद है एक किस्सा बहुत क्लियरली, जहां हम किसी एक शादी में गए थे और मेरे एक अंकल हैं, वो अपने बेटे पे चिल्ला रहे थे कि तुम्हें कितनी बार बोला है। तो हम सब कमरे में आए, क्या हो गया? बोला नहीं, ये करना नहीं चाहता, इसमें विल पावर की कमी है और इसलिए वो लेजी है। तो ये बात मुझे कभी समझ में नहीं आई कि, और मुझे वो सीन बहुत क्लियरली याद है, और वो बच्चा वहाँ बैठा था और वो ऐसे देख रहा था। पहली बात तो उसको बड़ा दुख हो रहा था कि सबके सामने उसको डांटा जा रहा है, बट ज्यादातर जो बात थी वो था कि विल पावर की कमी के कारण भी इंसान लेजी होता है, कि इसमें है, ये कर सकता है, क्षमता है, लेकिन विल पावर की कमी है, तो ये हर चीज को छोड़ देता है, अधूरे में छोड़ देता है, हर चीज शुरू करता है बीच में छोड़ देता है, तो विल पावर की कमी है इसलिए लेजी है। और उसको बार बार वो एक ही बार बोला जा रहा था, और बहुत बाद में, उस समय तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने ये समझा कि लेजीनेस जो है वो कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि विल पावर की कमी होती है, लेकिन हम ओवरवेल्म हो जाते हैं, हमको लगता है कि ये तो बहुत बड़ा पहाड़ है, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, और धीरे धीरे अगर उसको छोटे रूप में बांट के उसको बता दिया जाए तो शायद उसके लिए बेहतर होता है, इसकी बजाय कि हम उसको लेबल दे दें कि तुम्हारे में विल पावर की कमी है, तुम्हारी तो नीयत ही खराब है, तुम्हारा इंटेंशन ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में जहां पे आप हैंडल कर रहे हैं लोग, वो ओवरवेलम्ड हैं, वो डिसकनेक्टेड हैं, वो अफ्रेड हैं, उनको सिर्फ कंपैशन दिया जाए,
4: एनकरेजमेंट। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन बड़ों का काम होता है उमंग उत्साह बढ़ाना।
3: हाँ,
4: देखो हमेशा शुरुआत कैसे होती है, एक कदम, हिम्मत का एक कदम हमारा, हजार गुना मदद भगवान के भी, ये तो कहावत कहते हैं
3: जी।
4: हम तो उसमें भी कई बार क्या कहते थे, एक कदम मदद पहले आप दो, फिर हम हजार कदम भी उठाएंगे। तो दैट्स नॉट द वे, इट्स लाइक हिम्मत का पहला कदम, करेज का फर्स्ट स्टेप है। सेकंड, कोई भी जर्नी है, आपने कितना भी डिसाइड करके वो जर्नी शुरू की है, अप्स एंड डाउन्स तो आने ही है।
3: बिल्कुल,
4: हम कब घबरा जाते हैं या ओवरवेल्म हो जाते हैं, समझो हमने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, और उस प्रोजेक्ट में पहला थोड़ा सा कोई फेज ऐसा आ गया, थिंग्स आर नॉट वर्किंग जैसे मैंने सोचा था, हम एक इमेज पहले अपने मन में देख लेते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा होगा, हुआ नहीं है, मैंने विजुअलाइज कर लिया ऐसा होगा, फिर हम उससे अटैच हो जाते हैं
3: जी।
4: फिर हम इतने अटैच हो जाते हैं कि जो मैंने देखा है और जो रियलिटी है
3: वो अलग कैसे हो गया,
4: वो अलग होती है। जब वो अलग होती है तो मेरी अटैचमेंट हर्ट क्रिएट करती है,
3: जबकि वो रियलिटी थी नहीं इन द फर्स्ट प्लेस।
4: कभी थी नहीं रियलिटी, तो सिर्फ इतनी थी कि हमने आज कोई चीज शुरू की है, उसमें कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आएंगे, अप्स एंड डाउन, पीक्स एंड वैलीज होता ही है। नाउ जैसे वो वैली है, वी हैव टू कम आउट ऑफ इट ना, हम नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो आसपास वाले हैं, जो आपने कहा उनों का काम है थोड़ी हिम्मत देना, थोड़ा सा उमंग उत्साह बढ़ाना, वर्ड्स में बहुत

0: पावर होती है। थॉट्स में तो बहुत पावर होती है,
1: जैसे
0: ये वाले वर्ड्स हैं, ये इसकी नियत खराब है, ये तो हमें चीट कर रहा है, इसको तो पहले से पता था इसने ऐसे करना है। इतना कोई सोच विचार के अपना जीवन नहीं जीता, अगर इतना वो प्लान करता तो उसका अपना जीवन बहुत अच्छा होता।
1: जी बिल्कुल।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
1: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
2: मत मारे कालीन भैया, बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
3: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
4: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
2: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
4: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
5: XL Entertainment presents Mirzapur the movie, releasing worldwide on 4th September at your nearest cinema.
6: RK Jewels से खरीदिए diamond jewelry India वाले price में और pay कीजिए easy monthly installments में only at RK Jewels Islam. Best quality, best price.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आस्ट

0: ब्राइडल लहंगा और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानी।
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
2: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
3: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
4: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
5: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। It's a journey. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: हिम्मत, उमंग और उत्साह जीवन की हर जंग को जीतने की ताकत देते हैं। आइए इस पॉजिटिविटी को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो U2 जो है वो एक बहुत बड़ा म्यूजिकल बैंड है, बट आपने जो दो यू के बारे में बात की वो भी बहुत जरूरी, इन दो यू का इस्तेमाल करें, उमंग और उत्साह।
4: उमंग उत्साह, हिम्मत,
3: हिम्मत,
4: ये दोनों बहुत जरूरी, एंथुसियाज्म, ये दो पंख हैं उड़ने के लिए किसी भी जगह पर।
3: अरे वाह, बहुत
4: बढ़िया। स्पिरिचुअल लैंग्वेज में तो उसको क्या कहते हैं, दो पंख हैं उड़ने के लिए, एक हिम्मत और दूसरा उमंग उत्साह। अगर किसी में करेज है और एंथुसियाज्म है तो किसी भी चीज को पार कर सकते हैं।
3: बहुत खूबसूरत, अगर करेज है और एंथुसियाज्म है तो किसी भी पहाड़ को, ऊंचे पहाड़ हो वो उसको पार कर,
4: चाहे वो बीमारी है, चाहे वो कोई जॉब की प्रॉब्लम है, You can face it.
3: Yes, very nice.
4: लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है, कभी कभी जो लीडर्स होते हैं ना, आपके पास बहुत बड़ी टीम है जो सब कुछ करेगी। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट घर में पेरेंट है, ऑफिस में जो लीडर्स हैं, ये जो बड़े जो ऊपर बैठे हुए हैं, इनका जो मेन रोल है उमंग उत्साह बढ़ाना है। बाकी सब कुछ करेंगे, आप देखना। सब कुछ करेंगे वो। अभी एक लेवल पर हम आ जाते हैं जहाँ पर हमारे पास वी हैव अ बिग टीम हु विल डू थिंग्स,
3: राइट,
4: बट हम कई बार क्या करते हैं, उनों का हिम्मत और उमंग उत्साह बढ़ाने की जगह
3: तोड़ देते हैं। हमारा काम सिर्फ इनकरेज करना।
4: आप देखो रिजल्ट्स, आप देखें कितने आएंगे। यू जस्ट एवरी टाइम यू मीट देम से समथिंग दैट विल एनकरेज देम, दैट विल गिव देम होप, दैट विल गिव देम लाइट, अप्रिशिएट, एंड यू विल सी दे विल पुट इन मोर एफर्ट, अपनी ताकत से ज्यादा, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा करके दे।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
1: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
2: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
3: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
2: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
3: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
5: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, the king of mortgage industry.
7: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
4: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
8: आरके ज्वेल से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में, और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में. ओनली एट आरके ज्वेल्स इज़लिन. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. 732-339-3155.

0: हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: आपके एनकरेजमेंट के कुछ शब्द किसी के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकते हैं। आइए इसकी अहमियत समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक बहुत खूबसूरत हर्षा भोगले का मैं एक टॉक देख रहा था, तो उसने ये कहा था कि सबको जसप्रीत बुमराह अपनी टीम में चाहिए, लेकिन कितने लोग हैं जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में उस टैलेंट को, उस हुनर को एनकरेज कर रहे हैं। आपके टीम में जरूर जसप्रीत बुमराह जो है भरे पड़े हैं, लेकिन ज्यादातर हम उन्हें करा रहे होते हैं, उन्हें धुतकार रहे होते हैं, उनका इंटेंशन तोड़ रहे होते हैं, उनका इनकरेज नहीं कर रहे होते। अगर आप इनकरेज करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, तो जरूर आपके भी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ेंगे।
4: क्योंकि जो बना है ना, वो भी क्रेडिट हमेशा किसी एक दो को जरूर देता है जिन्होंने 100% उस पर फेथ रखा।
3: बिल्कुल,
4: वो भी कह देगा कि मेरे फादर थे या मेरे कोच थे, जिस समय मैं सबसे ज्यादा लो था तो भी उन्होंने मेरे ऊपर फेथ रखा, उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे कहा आप कर सकते हैं। तो ये क्या था, ये एनकरेजमेंट ही तो थी।
3: बिल्कुल,
4: जिस दिन आप लो थे उन्होंने फेथ रखकर कहा नहीं आप कर सकते हैं, सो दैट ब्रॉट आउट द बेस्ट इन देम।
3: बहुत बढ़िया।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: RK Jewel से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ओनली एट RK Jewel इजलिन बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington.
4: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
5: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
4: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
9: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
8: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
9: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
8: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islington.
10: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: HD Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर श्रेया, एक सवाल आया है। पल्लव है, वो कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, मेरा नाम पल्लव है, मैं अहमदाबाद से हूँ और कल मैं अपने कॉलीग के साथ कुछ बात कर रहा था और एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से, हम दोनों के बीच में जो मिसकम्युनिकेशन हुई उस वजह से वो बहुत जोर से मुझ पे चिल्लाने लगे, तो मैं क्या करूँ?
2: कभी कभी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है और सामने वाला थोड़ा हर्ट हो जाता है, भले हमारा इंटेंशन नहीं भी है। थोड़ा समय उन्हें ठंडा होने दे, बिकॉज अगर आप गर्म तवे पर भी अगर ठंडा पानी डालेंगे ना तो वो उछलता है। तो कभी कभी जब सामने वाला बहुत नाराज है, अपसेट है और हम समझाने की कोशिश करते हैं तो उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि समझने के लिए भी मन थोड़ा शांत चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: सो एक दिन दो दिन का गैप डाले, और अगर उस बीच में गैप तो डालना है, द गैप इज टाइम का गैप तो डालना है, लेकिन उस टाइम के गैप में एक मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना। जितना

0: हम उनसे बात नहीं कर रहे होते, मन में जरूर बात कर रहे होते हैं।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और वो जो मन में बात कर रहे होते हैं वो कई बार हमारी कॉन्वर्सेशन थोड़ी नेगेटिव हो जाती है।
1: उन्होंने ऐसा क्यों करा, क्या जरूरत है, हर बार वो चिल्लाते हैं, जस्ट बिकॉज इज अ बॉस वो कुछ भी बोल सकते हैं, ये नहीं सोचना है।
0: छोटी छोटी बातों में कैसे अपसेट हो जाते हैं, इतनी जोर के चिल्लाने की क्या बात थी, इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं थी, फिर इतने सेंसिटिव है, इतने दिन हर्ट रहते हैं, ये चलता रहता है चलता रहता है। ये गर्म तवे को और गर्म करने जैसा है, क्योंकि आपका वाइब्रेशन तो उन तक जाएगा ना। इसीलिए अगर इफ यू रियली केयर अबाउट दैट रिलेशनशिप, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप टाइम तो दे रहे हैं लेकिन साथ साथ आपके थॉट्स और वाइब्रेशन हील करते हैं। ये चीज हमें समझनी है कि हीलिंग थॉट्स और वाइब्रेशन से होती है। जैसे हम किसी स्थान पर जाकर के बैठ जाते हैं मंदिर में, तो हमें सुकून अनुभव होता है कि नहीं, तो वहां का वाइब्रेशन ही तो सुकून दे रहा होता है। वो वाइब्रेशन वहां के आने वाले लोगों ने ही तो बनाया होता है। सब आते हैं, कोई वहां पर पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उससे एक एनवायरमेंट क्रिएट होता है। अब वो जो व्यक्ति थोड़े से दर्द में है, व्हेन आई थिंक नाइस अबाउट देम, हम उनकी जो विशेषताएं हैं, जो क्वालिटीज हैं, जब भी उनकी स्मृति आए, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिव अबाउट देम, अगर हम अच्छा सोचते हैं, वो जल्दी हील होंगे। और हीलिंग होने के बाद ही, हीलिंग मना जब आपको लगता है थोड़े से नॉर्मल हो गए, तवा ठंडा हो गया है, तब जरूर बात करनी चाहिए। कभी कभी हम बात नहीं करते, वो मिसअंडरस्टैंडिंग गांठ रह जाती है, तो वो गांठ को सुलझाना भी जरूरी है। तो अपनी बात कहकर के उसको जल्दी ठीक करने में ही अच्छा है।
1: जी, जगजीत सिंह की बहुत प्यारी गजल है, उसमें वो कहते हैं कि गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। तो बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं कि एक बार गांठ लग गई तो बहुत समय लगता है उसको खुलने में, तो थोड़ा समय देना जरूरी है।
0: इसमें दो बातें हैं, एक बात ये जो आपने कही वो तो बिल्कुल बहुत अच्छी बहुत सुंदर बात है, गांठ हो तो उसको खोल लेना चाहिए। कभी कभी अगर रिश्ते बहुत स्ट्रांग हैं और आपको पता ही होता है कि ये जो हमारा मिसकम्युनिकेशन हुआ ये ईगो के कारण हुआ, कुछ है ही नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग, मुझे पता है कि आपकी मेरे प्रति बहुत रिस्पेक्ट है, मेरी आपके प्रति बहुत रिस्पेक्ट है, उस मोमेंट में, हीट ऑफ द मोमेंट में वो आर्ग्यूमेंट हो गया, मैंने आपको कुछ कह दिया, आपने मुझे कुछ कह दिया, अब उसके अंदर बहुत ज्यादा उस गांठ को सुलझाने के जगह उस गांठ को तोड़ के फेंकने में अच्छा है।
1: भूल जाओ उसके बारे में,
0: क्योंकि वो कुछ नहीं था, वो एक ईगो क्लैश था, वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो मिसकम्युनिकेशन नहीं था। वो ऐसा नहीं है कि आपने मुझे गलत समझा, एक्चुअली हम एक दूसरे को समझते हैं, हमें पता है, लेकिन हम परफेक्ट नहीं है, तो उस समय किसी कारण से हमने कुछ ऐसा गलत बोल दिया, बट देन अगर अब हम फिर बैठेंगे ना उसको
1: सोचने के बारे में,
0: गांठ खोलने के लिए, तो कई बार वो राई का
1: और उलझ जाता है, राई का पहाड़ बन जाता है। बिल्कुल सही कह रही है।
2: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अपने गोल की जर्नी में सेटबैक्स के बावजूद गिव अप ना करके कंसिस्टेंटली आगे कैसे बढ़ें? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: आपने मुझे हरिवंश राय बच्चन की बहुत कमाल की लाइन याद दिला दी, और शायद इसे अग्निपथ फिल्म में यूज भी किया गया था। वो कहते हैं, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ जरूर मिलेगी।
4: सी, मंजिल तक का एक लंबा रास्ता होता है, कभी कभी वो रास्ता लोग बहुत स्ट्रेस से क्रॉस करते हैं, थकावट से, परेशानी से, मंजिल पर पहुंच करके खुश हो जाते हैं, पर मंजिल पर पहुंचने में तो टाइम भी लगता है, और कितना समय उस मंजिल पर रहेंगे, फिर एक नया रास्ता शुरू हो जाएगा। जरूरी है रास्ते को एंजॉय करना, विच मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एंजॉय द प्रोसेस।
3: एब्सोल्युटली।
4: और कुछ भी नहीं करना, अपने को बस सुबह उठ करके बोलना है, जो भी मेरा रोल है, मुझे रोल से खुशी नहीं लेनी, मुझे खुशी से करना है।
3: अरे वाह, क्या बात।
4: इतना ही तो शिफ्ट लेकर आना है ना, अपने से बात करनी है, चाहे मुझे खाना बनाना है, खुशी से बनाना है, कैसे भी बनाया, मजबूरी से बनाया, फिर उन्होंने खाया, फिर किसी ने अप्रिशिएट किया तो खुशी मिली, नहीं, वो मंजिल से खुशी है।
3: मुझे खुश रहते वक्त हर काम करने हैं।
4: एंड खुशी इज नॉट, वी नॉट टॉकिंग अबाउट प्लेजर और एनीथिंग, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। आपका मन स्टेबल है, आपका मन में कोई नेगेटिव थॉट नहीं है, आप जो कर रहे हैं अपने 100% खुशी से कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, चाहे आप रोल कुछ भी प्ले कर रहे हैं।
3: बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
5: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
6: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
5: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
7: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
8: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
9: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
10: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
9: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
11: आवर बिजनेस वाज गेटिंग रिप्ड ऑफ बिफोर विद हाई प्रोसेसिंग फीस। आई एम सो ग्लैड वी स्विच्ड टू NRS Pay.
12: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
13: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
14: Wow! Yahi to hai mera dream lehenga!
15: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
14: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
15: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
14: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
16: आरके ज्वेल्स से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ओनली एट आरके ज्वेल्स इज़लिन। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: यार, इस वीकेंड कोई जबरदस्त प्लान बताना।
17: अरे मेरा बच्चा है तू, चल तुझे हंसी की फुल डोज दिलवाता हूँ यार।
18: प्रयोग थिएटर ग्रुप के 50th फेस्टिवल में धुरंधर फेम राकेश बेदी और अनंत महादेवन का प्ले लास्ट

0: ओवर और साथ में कलरफुल नौटंकी आला अवसर भी है।
1: संडे सितंबर 27th 4 PM जोएन मजेस्ट्रो परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर ईस्ट ब्रंसविक। बुक योर सीट्स एट prayogtheatre.com।
2: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया कि मेरी बहन कैंसर से रिकवर हो चुकी है लेकिन रिलैप्स का डर हमेशा बना रहता है, इस डर से कैसे निकले? आरती ने रायपुर से लिखा है।
3: डर, मैं कई बार कहती हूँ, कमजोर मन की रचना है। अब वो रिलैप्स होगा कि नहीं होगा, फ्यूचर तो किसी के भी हाथ में नहीं है।
2: बिल्कुल।
3: लेकिन चांसेस हैं कि अगर जिनको हुआ है वो डर क्रिएट कर रहे हैं तो रिलैप्स के चांसेस ज्यादा हैं। आपका जो इमोशन है वो आपके हर सेल में अब्सॉर्ब होता चला जाता है।
2: बिल्कुल।
3: कितने रिसर्च अभी बताती है कि ये कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीजेस, ये बहुत पहले मना अंदर कोई इमोशन है, सप्रेस्ड है, बॉडी धीरे धीरे उससे अफेक्ट हो रही है, फिर जाकर के वो निकलती है बाहर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फिजिकली अगर आप हील हो गए हैं, लेकिन इमोशनली अगर फियर है, हेट्रेड है, रिवेंज है, एंगर है,
2: तो बॉडी पे भी आएगा,
3: ये बीमारी वापस आएंगी ही आएंगी ही। डॉक्टर भी कई बार कह देते हैं कि 2-4 साल के बाद ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो ब्लॉक था उन्होंने आपकी बॉडी से निकाला है,
2: माइंड से नहीं निकाला।
3: वो ब्लॉक माइंड से नहीं निकाला है, वो माइंड से पहले सटल बॉडी में आता है, फिर सटल बॉडी से फिजिकल बॉडी में आता है। आजकल ऑरा टेस्ट होते हैं, आप ऑरा टेस्ट में पहले ही देख लेते हैं कि वो सटल बॉडी में कहाँ है, और आपको पता चल जाता है कि इतने समय के बाद ये फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट होना ही है। तो इसलिए फियर कमजोर मन की रचना है। तो कमजोर मन क्या कह रहा है? ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, फिर से ना हो जाए। पहले तो अपने मन को कहना है कि होगा ही नहीं दोबारा। मेरा जो इस बीमारी के साथ कार्मिक अकाउंट था सेटल हो गया, ये दोबारा होगा ही नहीं। फिर सेकंड कहीं कहेंगे, पर हो भी तो सकता है ना। अच्छा, अगर हो सकता है तो उसकी एक प्रेपरेशन, फियर तब होता है अगर आपने प्रेपरेशन नहीं करी। एग्जाम का फियर बच्चे को कब होता है? जब आपने उस चीज की तैयारी नहीं करी।
2: बहुत अच्छी बात कही, प्रिपेयर करो।
3: तैयारी अगर आपने कर लिया तो आपको डर नहीं होता। तो तैयारी क्या है, मन की तैयारी क्या है? 1% अगर ऐसा हुआ, सामना करेंगे। वी विल फेस इट।
2: वेरी नाइस।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzlin.
4: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
5: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
6: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
7: Amit Jetli of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam, live in the Revolution Tour, Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
8: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थकेयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग।
9: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर।
8: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके। तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर।
10: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
11: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
10: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
12: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
13: आरके ज्वेल्स से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, ओनली एट आरके ज्वेल्स इज़लिन। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
14: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
15: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
14: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
15: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
14: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।

0: चार्ज मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या आपने डर को समझ लेना ही उससे ओवरकम करने की पहली सीढ़ी होती है? आइए इस कॉन्सेप्ट को समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: साइंटिस्ट मारी क्यूरी जो नोबेल विनिंग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा था, नथिंग इन लाइफ इज टू बी फेयर्ड, इट इज ओनली टू बी अंडरस्टूड, जो आपने भी बात कही, एंड नाउ इज द टाइम टू अंडरस्टैंड, एंड इफ वी अंडरस्टैंड मोर वी विल डेफिनेटली फियरलेस।
4: सी अंडरस्टैंड, आपने बहुत अच्छी बात कही, तो इसलिए हर चीज का जवाब देना, फियर किस चीज का, डेथ का? हैव यू एवर सीन अ होम जहां पर कोई मृत्यु ना हुई हो?
3: चांस ही नहीं है।
4: किस चीज का फियर है? मिस्टेक का। हैव यू एवर मेट एनीबॉडी जिसे भूल ना हुई हो? किस चीज का फियर है? जजमेंट का। पीपल विल जज नो मैटर व्हाट। तो जब वो होना ही है तो किस चीज का फियर है? आप अपने को प्रिपेयर कर ले कि अगर कोई क्रिटिसाइज करेगा, जज करेगा, ठीक है, इट इज देयर पर्सनालिटी, everybody has an opinion. आपको डेथ का फियर है, आप अपने को बता ले, इट इज इनएविटेबल। आपको बीमारी का फियर है, अपने को समझाए, फिजिकल बॉडी में है, पेन कंपल्सरी है, सफरिंग ऑप्शनल है, विल टेक द बेस्ट ट्रीटमेंट, वी हैव द बेस्ट मेडिकल, इतनी एडवांस हो गई है, जो भी करना होगा करेंगे। आप मन को तैयार करें, एक बार आपने मन को तैयार कर दिया एंड यू हैव प्रिपेयर्ड योरसेल्फ टू फेस इट, फियर चला जाता है। एक्चुअली फियर जाएगा तो हैप्पीनेस आएंगे। फियर को फेथ से चेंज करते
3: हैं। वाह, क्या बात है।
4: फेथ इन लाइफ, फेथ इन एवरी सीन ऑफ लाइफ, फेथ इन गॉड। फियर को फेथ से चेंज करते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
3: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. proudly presents सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर।
4: फ्राइडे 11 सितंबर 8:30 PM विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ETS अरेना अटलांटिक सिटी।
3: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट। टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर एंड saiusainc.com।
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
7: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
8: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
7: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
9: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
10: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: Type C cable के साथ phone तो charge कर लोगे, खुद को कैसे charge करोगे? Mirchi Recharge Mornings, सुबह 6 से 8, only on Mirchi, it's hot.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, रवि का सवाल आया है कि जब लोग मजबूरी का फायदा उठाकर जरूरत की चीजें महंगी बेचते हैं तो क्या ये मॉरली गलत नहीं है, और ऐसे लोगों को कैसे रोका जाए?
3: मॉरली तो गलत ही है। किसी को भी एक्सप्लॉइट करना, किसी का भी एडवांटेज उठाना, और खास ऐसे समय पर एक्सप्लॉइट करना जिस समय वो बहुत दर्द में है,
2: सही बात,
3: ये बहुत गलत है। ये बहुत बहुत डीप कर्मा है, स्पेशली अगर सामने वाला दर्द में है। जैसे ऑलरेडी फैमिन है और आप फूड प्राइसेस बढ़ा दें, ऑलरेडी वाटर के शॉर्टेज है और आप उस समय पानी के रेट बढ़ा दें, ऑलरेडी आपके सामने कोई बीमार आया हुआ है और आप
2: मेडिसिन की प्राइसेस बढ़ा दें,
3: या जान करके कोई गलत टेस्ट लिख दें, मना दर्द वाले को एक्सप्लॉइट करना, ये डीप डीप कर्मा है।
2: बट ये आजकल सब जगह होता है। जब फेस्टिवल्स होते हैं तो यू नो रिसॉर्ट्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, फ्लाइट्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो द होल इकोनॉमी इज द वे इट इज कि जब जरूरत आपको बढ़ रही है, आपकी उनको पता है डिमांड बढ़ने वाली है, तो ऑटोमेटिकली सेम चीज की प्राइस वो बढ़ा देते हैं।
3: सी, कई जगह पर वो इकोनॉमी और वो किस प्रकार से उनका सिस्टम चलता है, आई एम नॉट अवेयर। मॉरली कोई चीज गलत होना और मार्केट की स्ट्रेटेजी होना वो अलग चीज है। इसलिए कभी जब मॉरली वो चीज गलत करते हैं तो गवर्नमेंट भी कैप कर देती है प्राइसेस को। पीछे भी आई डोंट रिमेम्बर कुछ हुआ था जब
2: प्राइसेस में आई थिंक गवर्नमेंट ने कैप कर दिया था।
3: फ्लाइट के प्राइसेस में भी जिस समय वॉर हुआ था,
2: बिल्कुल
3: उस समय पर जब फ्लाइट प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे। सो व्हेन इट इज एथिकली मॉरली रॉन्ग, तो फिर जो पावर पर है, जो पोजिशन पर है, जिनके पास वो पावर है, उनको उस चीज को यूज करना चाहिए। हर एक का एक अपना रोल है, वो कैप करते हैं या जो भी वो जिस तरह से मदद करते हैं वो उनका रोल है। सिस्टम में अगर हमारे पास वो पावर नहीं है तो हम वो नहीं कर सकते, लेकिन हर एक को ये याद रखना पड़ेगा कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसका कॉन्सिक्वेंस आपको फेस करना पड़ेगा।
2: तो ये पूछ रहे हैं कि उनको कैसे, क्या बताएं, हम क्या बोलें?
3: नहीं, जो कर रहे हैं हम उनको क्या बोल सकते हैं, वो तो करने वाले को हम रियलाइज करा सकते हैं कि देखो ये जो डीप कर्मा है इसका कॉन्सिक्वेंस लौट करके आना ही है। बाकी उस समय पर तो आई थिंक जो एक्सप्लॉइट हो रहा होता है वो अपनी बात रख ही सकता है, बाकी तो क्या ही कर सकता है। तो सिस्टम ही अभी सारा ऐसा हो गया है। अपनी बात को हम असर्टिवली जरूर कहें, सिस्टम की मदद लें, पोजीशन पावर पर कोई है तो उसकी मदद लें, नहीं तो फेथ रखें कि उसके कर्म से उसका भाग्य है। कोई भी अगर नहीं देख रहा है तो ऊपर वाला देख रहा है। हर चीज का लॉ जो है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बहुत ज्यादा उस चीज को सोच कर आपने डिस्टर्ब हो।
2: ये बहुत अच्छी बात की, फेथ रखना बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी जी ने भी ऐसा ही कुछ कहा था कि डोंट लूज फेथ इन ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी इज लाइक एन ओशन, यू नो अ फ्यू ड्रॉप्स इन द ओशन माइट बी डर्टी, डजंट मेक द एंटायर ओशन डर्टी।

0: ये बहुत जरूरी है कि हम उस समय उनको बात बताएं, कोशिश करें, लेकिन फेथ सिस्टम में या लोगों में नहीं लूज करें।
1: एंड मोर इम्पोर्टेंटली हम उस देखो हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर है। आज अगर कोई चीज हमारे साथ ऐसा हमें लगता है कि इनजस्टिस है, फॉर मी आई ऑलवेज टेक दिस एज अ लेसन कि ये मुझे नहीं करना,
0: मुझे तो नहीं करना।
1: देखो मेजोरिटी भी अगर कोई चीज कर रही है तो वो राइट है, ऐसा नहीं,
0: जरूरी नहीं है।
1: नहीं नहीं, अभी सिस्टम ऐसा होता है सब कर रहे हैं
0: इसलिए लगता कि सही है,
1: तो सही है, ऐसा नहीं होता। सब कर रहे हैं तो वो चीज राइट नहीं है। अगर आपको पता है कि वो चीज राइट नहीं है, आप इतनी ताकत रखो दैट यू नेवर बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम।
0: सही बात।
1: इफ यू आर ऑल्सो नॉट बिकमिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम, देन ऑल्सो यू आर प्रोटेक्टिंग द सिस्टम ना।
0: वेरी नाइस।
1: आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से केवल अपना पार्ट ठीक बजा रहे हैं तो भी आप सिस्टम को हेल्प कर रहे हैं।
0: बिल्कुल।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, किरणदीप का सवाल आया है कि मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए जी है, आज भी सबकी जिम्मेदारी निभाती हूँ, लेकिन खुद को कभी प्यार या अपनापन नहीं मिला है। इसी वजह से हमेशा अंदर से परेशान रहता हूँ, क्यों और क्या करूँ?
3: हमने अगर जीवन भर दूसरों को दिया है तो हम कितने भरे हुए होने चाहिए एक्चुअली में। लेकिन हमने बाहर से दिया है,
2: अंदर से,
3: और देने के बाद बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया है। और जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई तो हम अंदर से हर्ट हो गए कि मैंने सबके लिए किया है तो उनको भी मेरे लिए करना चाहिए। इसलिए पहला रिश्ता जोड़ना चाहिए अपने साथ। वो रिश्ता हम लोग नहीं जोड़ते जिसको हम सेल्फ लव कहें, सेल्फ वर्थ कहें, सेल्फ रिस्पेक्ट कहें। वी आर ऑलवेज वांटिंग फ्रॉम पीपल
2: कि मुझे भी मिले, मैंने
3: जो किया। हम बहुत लोगों के लिए करते हैं ना, और फिर वो हमसे ठीक से व्यवहार नहीं करते या वो ठीक से बात नहीं करते या रिस्पेक्ट नहीं करते तो बहुत हर्ट हो जाते हैं
2: कि मैंने इसके लिए इतना किया, इसको देखो ये कुछ भी नहीं कर रहा,
3: कुछ भी नहीं कर रहा। सो इट इज नॉट हाउ पीपल बिहेव विद यू, बट इट इज हाउ यू बिहेव विद योरसेल्फ।
2: बड़ा मुश्किल है सिस्टर, लेकिन क्योंकि एक्सपेक्टेशन होती हैं।
3: नहीं, क्यों मुश्किल है? एक्सपेक्टेशन तब होती है जब वो रिश्ता अपने साथ जोड़ा नहीं है। खाली होंगे तो एक्सपेक्टेशन होंगे ना। देखो, अगर आप जैसे शरीर है, शरीर को खाना चाहिए, अगर आपने अपना खाना खा लिया तो आपकी आंख दूसरे की प्लेट में नहीं जाती है।
2: सही बात।
3: लेकिन अगर आप खाली हैं तो आप दूसरे को भी देखेंगे वो क्या खा रहे हैं, फिर आप मांगेंगे भी, फिर आप छीनेंगे भी, फिर आप चोरी भी करेंगे। क्यों? आपने अपना खाना नहीं खाया, अपना बनाया नहीं और अपना खाया नहीं।
2: तो अपना खाना खाओ, खुद का ख्याल रखो, तो बाहर से अपेक्षाएं नहीं होंगी।
3: बाहर से अपेक्षाएं, मतलब यू आर ऑलवेज ओपनिंग द डोर फॉर बीइंग हर्ट।

0: ना, आप जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं पता नहीं उनके पास है नहीं है, वो देंगे नहीं देंगे, तो हमारी एक लंबी लिस्ट होती है कि दूसरे को काइंड होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, लविंग होना चाहिए. कम से कम जिनके लिए मैंने इतना किया है उनको तो करना चाहिए, पर आपने उसको जीरो कर दिया. इसलिए कहते कर्म कर फल की इच्छा नहीं कर, करा मुझे वहां से कुछ नहीं चाहिए. सो द फर्स्ट रिलेशनशिप विद योर सेल्फ एंड द सेकेंड रिलेशनशिप विद द ऑलमाइटी, जो प्यार का सागर है, शांति का सागर है, जो दाता है, जो सबको देने वाला है, जो सबका बोझ उठाने वाला है, वो आपका भी उठा लेगा ना.
1: क्या बात है?
0: तो इनवर्ड और अपवर्ड जाने के बाद आउटवर्ड जाना चाहिए.
1: वेरी नाइस.
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
3: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
4: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
5: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
6: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
5: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
7: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
9: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
10: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
9: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
11: सुनो ब्राइड, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
12: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
11: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
12: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
13: Amit Jetley of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour, Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
14: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
15: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
16: Buying a home? Our rate saver will beat your locked rate.
15: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.
17: आरके ज्वेल से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, ओनली एट आरके ज्वेल्स इज़लिन। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
18: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए, इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची 89.9।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सबसे पहले खुद के साथ एक हेल्दी रिश्ता बनाना क्यों जरूरी है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: गुलजार साहब की कमाल की पोइट्री लिखते हैं, मैं इनकी किताबें पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो कहते हैं कि आईना देखकर तसल्ली

0: हुई, हमको इस घर में जानता है कोई, तो उसी बात से आपकी बात मुझे आ गई कि पहले खुद के साथ रिश्ता जोड़ो। अगर आईना देख के अगर आपको पहचान में आता कि यार हाँ हमको भी इस घर में जानता है कोई, तो ऐसे ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी।
1: खुद को खुद के साथ रिश्ता जोड़ने का मतलब है, वो कई बार हम समझते नहीं, हम कहते खुद के साथ रिश्ता जोड़ने का मतलब क्या है। खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का मतलब है खुद को एक्सप्लेन करना। जैसे देखो आज किसी का मूड खराब होता है तो हम उसको ठीक करते हैं ना, हम उसको क्या कहते हैं, छोड़ो ना, जाने दो ना, लेट गो करो ना, आगे बढ़ो ना। ऐसे खुद को हील करना, हर्ट भी तो हमने अपने को किया। कोई भी बात हमने कहा, अरे देखो उन्होंने मेरे से ठीक से बात नहीं करी, उन्होंने मुझे उतना अटेंशन नहीं दिया। अब खुद से हम कह सकते हैं हो सकता है वो बिजी है,
0: सही बात,
1: हो सकता है दे गोइंग थ्रू सम बैटल और उनका ध्यान ही नहीं गया हो,
0: क्या बात है,
1: हो सकता है कि ये उनकी पर्सनालिटी है, मुझे चाहिए ही नहीं, मैं तो देने वाला हूँ, आई विल गो नेक्स्ट टाइम एंड ग्रीट देम। हर एक को अपने को खुद भरना है और रिश्तों में सिर्फ देना है।
0: वेरी नाइस,
1: वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। और जब हम रिश्तों में आते हैं, लेना नहीं है, ये अंदर सा पक्का करें। हर रोज हमें सुबह एक लाइन अपने को कहनी है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। हम लेने वाले नहीं, दाता के बच्चे
0: देने वाले।
1: एंड व्हाट यू गिव यू आर द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव। आप जो देंगे वो सबसे पहले
0: आप ही को मिलेगा।
1: चाहे वो नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है, चाहे वो प्यार है वो गुस्सा है। इसलिए गिव लव टेक लव, गिव हैप्पीनेस टेक हैप्पीनेस,
0: गिव टेंशन टेक टेंशन,
1: एब्सोल्युटली।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
1: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
2: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS, NMLSID 2108069।
3: देसी खाना,
4: देसी शॉपिंग,
3: देसी कल्चर
4: और देसी एंटरटेनमेंट,
3: बस एक ही डेस्टिनेशन,
4: इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेयर, सितंबर 12th और 13th, श्री कृष्णा मंदिर मॉर्गनविल।
0: फॉर वेंडर्स एंड इन्फॉर्मेशन विजिट www.krishnatemple.org।
5: RK ज्वेल से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, ओनली एट RK ज्वेल्स इसलिम। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: किसका है ये तो
7: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
8: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. प्राउडली प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर।
9: फ्राइडे 11th September 8:30 PM विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ETS अरेना अटलांटिक सिटी।
8: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट। टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर एंड साई USAinc.com।
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
10: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 Middlesex Avenue, इज़लिन।

0: थॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। रंग रेजा, रंग रेजा।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर सारा का एक सवाल आया है कि जब किसी को ये महसूस होने लगे कि वो अपने आसपास के लोगों पर बोझ बन रहा है तो उसे क्या करना चाहिए।
3: बोझ कई प्रकार के होते हैं। आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं
2: जी, बिल्कुल,
3: फिजिकली डिपेंडेंट हैं, इमोशनली डिपेंडेंट हैं, तो पहले तो वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन से बोझ की बात कर रहे हैं। कई बोझ से हम निकल सकते हैं। अगर आपको लगता है फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो आप अपना कुछ इस प्रकार से सेट कर सकते हैं कि आप ना उन पर डिपेंडेंट हो। लेकिन एक जगह है जहाँ हमें डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, वो है इमोशनल।
2: हाँ, बहुत अच्छी।
3: फिजिकली डिपेंडेंट भी हम वैसे नहीं चाहते, पर कभी कभी सर्कमस्टांस ऐसी बन जाती है। हम बीमार हैं, हमें उस समय किसी का सहयोग लेना पड़ता है। हम बुजुर्ग हैं तो भी हमें सहयोग लेना पड़ता है। तो उसको ये नहीं समझना चाहिए हम किसी के ऊपर बोझ हैं। लेकिन इमोशनल डिपेंडेंसी मैं नहीं समझती होनी चाहिए। इमोशन हम क्रिएट करते हैं। कोई कैसा भी हमारे साथ व्यवहार करता है, उसके बाद भी अंदर किस प्रकार से फील करना है वो मेरी चॉइस है। तो इमोशनली इंडिपेंडेंट होना है। बोझ हमेशा सोच का होता है। बोझ कभी भी जिम्मेवारियों का नहीं होता है, बोझ सोच का होता है। तो बोझ हो सकता है कि आपकी अपनी सोच ही वो बोझ क्रिएट कर रही है, शायद किसी को भी नहीं। बहुत कारणों में कई बार ना ऐसा होता नहीं है, रियलिटी नहीं होती है। कई बार बुजुर्ग माता पिता को लगता है बच्चों पर बोझ है, वो कहते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं, हमें तो बोझ लगता ही नहीं है। तो हमारी सोच में ऐसा होता है और इसलिए हमें फील होता है कि शायद हम बोझ हैं। तो बोझ सोच का होता है, तो सोच को परिवर्तन करें।
2: बेसिकली आप कह रही हैं कि आस्किंग फॉर हेल्प इज नॉट अ साइन ऑफ बीइंग अ बर्डन, बट इट इज द करेजियस एक्ट ऑफ लेटिंग पीपल लव यू।
3: सी, एज लॉन्ग एज asking for help is not wrong, but वो help के पीछे intent होनी चाहिए अपने को empower करके independent बनाने का।
2: बिल्कुल।
3: कभी कभी आप help मांग रहे होते हैं पर वो help आप अपने को independent बनाने के लिए नहीं, और ही आप धीरे धीरे उस व्यक्ति पर dependent होते चले जाते हैं।
2: वो नहीं है।
3: बाकी हम सबको कभी ना कभी थोड़ी help लगती है। It is okay.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
5: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
6: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
7: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
6: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
7: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
6: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
2: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
10: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। एक और सवाल आया, वो कहते हैं कि जब मैं डीप मेडिटेशन में होता हूं तो अक्सर किसी के मेडिटेशन एरिया में आने से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, ऐसा क्यों होता है?
2: ऐसा नहीं होना चाहिए। मेडिटेशन का पर्पस है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, डिस्टर्ब नहीं हो। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है जो हमें डिस्टर्ब करती है कि मैं मेडिटेशन कर रहा था, आपने उस समय टीवी क्यों चलाया, आपने उस समय फोन पर क्यों

0: वही सिमिलर क्वेश्चन कि मैं जब मेडिटेशन करता हूँ उसी समय मेरी वाइफ फोन पर जोर जोर करके अपने सिस्टर से बात करती है। तो फिर उनको कहा देखो ये आवाज आपको सुनाई दे रही है। कहते कौन सी आवाज? कहते ये जो जोर जोर की आवाज है। तो नीचे एक सब्जी वाला जोर जोर के सब्जी बेच रहा
1: लेकिन
0: था,
1: वो नहीं सुनाई दिया,
0: वो नहीं सुनाई दिया। तो कहते वो तो उसका काम है, वो तो वो करेगा, उसको चिल्लाना पड़ेगा। उस सब्जी वाले का
1: से
0: जो
1: फर्क नहीं
0: काम है
1: पड़ रहा
0: आपने
1: है।
0: उसको एक्सेप्ट कर लिया था।
1: लेकिन अपनी बीवी के तेज फोन पे बात करना आपने एक्सेप्ट नहीं किया,
0: आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि जब मैं मेडिटेशन कर रहा
1: उस
0: हूँ
1: समय वो ना
0: उस
1: करे।
0: समय वो ना करे। सो अगर हम डिस्टर्ब हो रहे होते हैं तो वो कोई हमारी फील्ड में आता है उसके कारण नहीं होते, हमारे मन ने कोई एक्सपेक्टेशन क्रिएट की होती है, वो फुलफिल नहीं होती तो हम हर्ट होते हैं, अंदर हो रहे हैं ना डिस्टर्ब, हमारे नेगेटिव थॉट्स हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं ना।
1: बिल्कुल
0: तो अपने को याद दिलाएं कि मेडिटेशन का पर्पस ही ये है
1: हाँ।
0: कि हमें कुछ भी हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेडिटेशन, कि इररिस्पेक्टिव सिचुएशन कैसी है, इररिस्पेक्टिव लोगों का व्यवहार कैसा है, इररिस्पेक्टिव वेदर कैसा है, चैलेंजेस कैसे हैं, आप अंदर में काम और स्टेबल हैं और उस स्टेबिलिटी से आप रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी
1: हाँ
0: तो कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है।
1: और अगर अभी नहीं हो रहा तो धीरे धीरे हो जाएगा, अपने आप को भी वक्त दें और दूसरों पे भी इरिटेट ना हो।
0: जी
1: बहुत बढ़िया।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: इतना पसंद था ये गाना, इनफैक्ट अभी भी है, बट मेरे दो भाई यशराज मुखाटे एंड केतन सिंह हैव रूइंड इट फॉर मी नाउ। दैट वाज बेशरम रंग, इस हफ्ते गाना नंबर 7 पर।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: ट्रूली वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स दिस ईयर। पठान के इस गाने ने पागलपन मचाया, इट स्टेड ऑन नंबर 1 फॉर सो मेनी वीक्स। लेकिन अब नई फिल्मों के आते खिसक रहा है थोड़ा थोड़ा। दिस वीक इट्स ऑन नंबर 7 फ्रॉम नंबर 4 लास्ट वीक। एंड माई नेम इज सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची डॉट 20। एंड ये जो दो दोस्त है मेरे, केतन जो खुद एक रेडियो जॉकी रह चुका है एंड यशराज मुखाटे, इन दोनों ने दिमाग में अब ये नया वर्जन डाल दिया है। इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था कि बेशरम रंग की जो लिखावट है वो थोड़ी ओल्ड स्कूल है। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, एंड दीज टू डिसाइडेड दैट ये एक 60 के दशक का वर्जन बनाएंगे। एंड अगर रफी साहब इस गाने को गाते तो शायद ये कुछ ऐसा सुनाई देता।

आई हेट इट सो मच दैट आई एक्चुअली लव इट. मतलब हंसी भी आ रही है और नाज भी है इन दोनों भाइयों पर. खैर आगे बढ़ना है और गाना नंबर 6 हमारा इंतजार कर रहा है. इट्स अ ब्रांड न्यू सॉन्ग. इट्स फ्रॉम मिस्टर पंजाबी अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म सेल्फी. गाने का नाम है कुड़िये नी तेरी. इट्स मेकिंग इट्स डेब्यू हियर ऑन नंबर 6 ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन. नंबर 6.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो मुकेश जी।
2: कौन?
1: मुकेश जी मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली थोड़ा।
2: नहीं हो पाया भाई?
1: हाँ वो नहीं हो पाया सर।
2: हाँ नहीं हो पाया
1: सर वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की। सर वो भी हो नहीं पाई है वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
2: नहीं क्या नहीं पाया तुम्हारे यार रोज के तुम्हारे जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया क्या मजाक ही क्या है ये?
1: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ वो एक
2: क्या समझ रहे हो भाई।
1: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
2: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
1: सर वो
2: ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया मुझे फोन करना है मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया।
1: नहीं सर
2: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे।
1: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया।
2: क्यों नहीं हो पाया
1: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी
2: है?
1: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
2: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
1: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ मतलब हम
2: क्या करा दूँ
1: सर मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
2: कैसी FIR दिमाग खराब हो गया तेरा पागल तो नहीं है तू?
1: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
2: क्या गुस्सा ना करूं नई गाड़ी थी हमारी।
1: नहीं सर आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारे भी तो उसमें कुछ गया है हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया
2: उसमें
1: ग्रीस लगाया उसमें हमने पेट्रोल डाला है।
2: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगा। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में तुम्हारे वर्कशॉप में।
1: अच्छा सर
2: मुझे चाहिए अपनी वापस।
1: सर आप इतना गुस्सा ना करें
2: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की।
1: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा।
3: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
2: तो जान निकाल दी हमारी।
3: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप पे बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए गुस्सा खत्म करिए।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
8: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
7: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
9: पीठ पे छुरा क्यों घोंपे? मत मारे कालीन भैया बाहुबली मारते नहीं मारने का ऑर्डर देते हैं।
10: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
11: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
9: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
11: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
12: Excel Entertainment presents Mirzapur the movie. Releasing worldwide on 4th September at your nearest cinema.
13: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
14: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
13: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
14: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
13: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
15: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
16: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
15: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
17: Jai Gurudev. अवसर आवीने उभो छा आंगणे चलो भेगा मड़ी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए आपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोड़ायो जेमा
18: 13 सितंबर रविवार
17: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती अने 20 सितंबर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 732-357-8200। जय गुरुदेव।
19: निहाल सिंह नू बंगाली कुड़ी नाल कीवें होया प्यार?
3: यू बॉयफ्रेंड?
7: नो बॉयफ्रेंड।
3: सेम नो गर्लफ्रेंड।
19: की निहाल बंगाली कुड़ी दी सच्चाई फड़ पाएगा वेखो सिंह वर्सेस कौर 2 रिलीजिंग ऑन 11 सितंबर स्टारिंग गिप्पी गरेवाल शहनाज गिल डायरेक्टेड बाय नवनीत सिंह प्रोड्यूस्ड बाय गिप्पी गरेवाल रवनीत कौर गरेवाल श्रीकांत मोहता एंड महेंद्र सोनी।
20: आरके ज्वेल से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ओनली एट आरके ज्वेल्स इज़लिन बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।

0: ताज्जुब नहीं होगा अगर ये गाना नंबर वन तक जाए, बिकॉज ऑल्सो इट इज माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ द चार्ट्स, तेरे प्यार में बाय अरिजीत सिंह फ्रॉम तू झूठी मैं मक्कार। बॉयज एंड गर्ल्स, फॉर दोस जिनको फिल्मों का ज्यादा आइडिया नहीं है, तो ये फिल्म तू झूठी मैं मक्कार डायरेक्ट की है मिस्टर लव रंजन ने। एंड लव ने जो चार फिल्म में इससे पहले डायरेक्ट की हैं, ऑल ऑफ देम फीचर्ड हिज फेवरेट पेयर कार्तिक आर्यन एंड नुसरत भरूचा। अब कार्तिक तो नेक्स्ट लेवल स्टार बन गया है एंड सो इज नुसरत। सो लव ऑल्सो डिसाइडेड कि अब यार मैं बड़ी फिल्म बनाऊंगा एंड तब तू झूठी मैं मक्कार हैपेंड। मिर्ची टॉप 20 पे आई एम सुरेन एंड द वन थिंग दैट इज रियली अमेजिंग इज द न्यू पेयरिंग ऑफ द टू कपूर्स रणबीर एंड श्रद्धा। दोनों फिल्म फैमिली से हैं, दोनों फैमिली फ्रेंड्स, दोनों के डैडीज अच्छे दोस्त, बट अब तक दोनों ने साथ में काम नहीं किया था एंड द बेस्ट पार्ट they both actually look good together. But dono ko ek dusre ke sath film karna kya raas aaya, jaan lete hain.
1: Everybody knows that you know Ranbir is such a fabulous actor and I've always admired his work and ye experience karne ke liye on set with him bahut maza aaya and he is really superb.
2: So I've known Shraddha since I guess she was born and I was born because our parents are friendly and so we've been friends for a long time. But working with her, I really realized that, you know, we share similar creative energies. I think she comes with the same kind of passion, dedication and fire, you know, to give her best. I think it is Love's genius that she casted both of us together. So thank you, Love.
3: Thank you.
2: I give you credit for this also.
0: I really like their chemistry and I hope it does work some magic. And kya hai ki Pritam Da ne jo gana banaya hai, uska zone, uski vibe ek aur gaane se kaafi milti julti hai. But usse pehle आपको बता दूं इस हफ्ते का गाना नंबर 3 कौन सा है।
4: तुम्हें जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान, उस पे मर मिट जाए।
0: अब मैं क्या कह रहा था कि ये जो गाना है तेरे प्यार में, इट डज साउंड लाइक अनदर सॉन्ग दैट आई रियली लव। जो फीलिंग, जो वाइब थी लव आजकल 2 के गाने में, आई फाउंड इट हियर एज वेल एंड दैट इज व्हाई मेरे इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक है हाँ मैं गलत, वंस अगेन बाय अरिजीत सिंह एंड प्रीतम दा ऑन द मिर्ची डॉट 20 विद मी सुरेन।

0: that room.
1: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
3: जिसके शब्दों में आग है,
2: जिसकी आवाज में जादू है,
3: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
2: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Inefficient.
7: Very complex.
8: Clumsy hoy.
9: Confusion hi confusion.
10: Disjointed software ko use karna utna easy nahi jitna aap samajh rahe hain. Toote phoote software se chhutkara pao. Apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing se leke customer support, accounting, operations ya HR. Kaam anek, software ek, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
11: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
12: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
11: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
12: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington.
13: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
14: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
15: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
16: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड

0: इस गाने का ओरिजिनल 12 साल पहले ही तो आया था, इतनी जल्दी इतना पुराना थोड़ी ना हो सकता है कि इसका नया वर्जन निकालना पड़ जाए।
1: सुरेन के साथ Only on Mirchi, It's hot।
0: प्रीतम दा को खुद ही के गाने रिहैश करने पड़ रहे हैं। मे बी ये मार्केट की डिमांड है, बट आई डोंट थिंक प्रीतम दा खुद ये करना चाहते होंगे। मिर्ची टॉप 20 पे इट्स मी सुरेन एंड कैरेक्टर ढीला है 2.0 इज द ब्रांड न्यू एंट्री ऑन द चार्ट्स एंड ये सीधा आया है नंबर 2 पर एंड दैट इज अनबिलीवेबल। और इस गाने की पॉपुलैरिटी के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है कार्तिक आर्यन की खुद की पॉपुलैरिटी, क्योंकि आजकल कार्तिक जो भी करता है वो सोना बन जाता है। एंड प्रीतम दा हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन मेनी हिट सॉन्ग्स इन कार्तिक्स 10-year old करियर, और ये बात कार्तिक खुद एक्नॉलेज करता है।
2: प्रीतम दा का जो म्यूजिक हमेशा रहा है, बीट एनी फिल्म ऑफ माइन, पिछले जो बुलबुलेट 2 आई थी या फ्रेडी भी आई थी, उन दोनों के भी गाने काफी चले थे, फ्रॉम द टाइटल ट्रैक टू काला जादू लास्ट ईयर, दिस ईयर ऑल्सो, अभी ये एक एक करके गाने और खुलने वाले हैं। इसमें मुंडा सोना हूँ अभी काफी चल रहा है, एंड रिसेंटली मेरे सवाल का जो रोमांटिक ट्रैक है, अगेन इट्स ऑन, मतलब मैं ट्रेंडिंग लिस्ट बेसिकली, सो दीज आर ऑल वर्किंग, एंड सो आई हैव बीन रियली लकी विद म्यूजिक। एंड म्यूजिक काफी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एस्पेक्ट होता है एक एक्टर के करियर को, एक अलग सा उसको एक हीरोइज्म दर्शाने में या फिर उसको एक उस लेवल पे पहुंचाने के लिए। सो आई हैव बीन, बी इट सोनू टीटू का म्यूजिक, बी इट भूल भुलैया का म्यूजिक, और बी इट एनी अदर फिल्म ऑफ माइंड, ये म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन लुका छुपी। तो आई थिंक ये फिल्म में भी वही हो रहा है शहजादा में, एंड थिएटर्स में खींचती है ऑडियंस को ये, तो वो बहुत जरूरी है।
0: भाई को तो प्रीतम दा का साथ भी मिल गया है, विच मींस ये एक सुपरस्टार होने का सबसे बड़ा सबूत है। रणबीर से पूछ के देखो, वो भी यही बताएगा। ऑलराइट, सो नाउ द नंबर 1 सॉन्ग मिर्ची टॉप 20 पे, वी हैव अ न्यू किंग, जिस गाने ने पिछले

0: हफ्ते डेब्यू किया नंबर 3 पे, इस हफ्ते आ गया है सीधा नंबर 1 पे, राइडिंग द नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस, तनिष बागची की एक और उपज, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फ्रॉम अक्षय कुमार एंड इमरान हाशमीज अपकमिंग फिल्म सेल्फी। सो बेसिकली दो गाने ऑन द टॉप 2 पोजीशंस जो है पुराने गाने। टॉक्स अबाउट योर टेस्ट मोर देन माइन, चेक इट आउट, यू आर ऑन द मिर्ची टॉप 20, आई एम सुरेन।
1: नंबर 1।

0: आपको क्या लगा हम भूल गए?
1: इंटरेस्टिंगली उदित जी ने अपने हिस्से तो फिर गाए हैं, बट अभिजीत दा के पुराने हिस्से रिटेन किए गए हैं। मे बी ना कर दी उन्होंने, मे बी ही डिडंट केयर। इस हफ्ते का नंबर वन गाना मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, लेकिन इस शो मिर्ची डॉट 20 का खिलाड़ी अब आपको कहता है बाय बाय। आई बी बैक सेम प्लेस सेम चैनल सेम टाइम। मेरे डीएम्स में स्लाइड करने के लिए सुरेन सुरेन ऑफिशियल इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सुरेन ओवर एंड आउट।
2: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतूराज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने ये सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर तो मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो है ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज only on मिर्ची it's hot।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
6: किसका है ये तो?
7: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
8: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इंक।

0: proudly presents Sonu Nigam live in concert on his biggest tour ever.
1: Friday, 11th September, 8:30 p.m. Witness history at Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City.
0: Do not miss the greatest musical night. Tickets available at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
2: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थकेयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग।
3: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन वीक शॉपिंग मॉल के अंदर।
2: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके। तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर।
4: आरके ज्वेल से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ओनली एट आरके ज्वेल्स इसलिन बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, इज़िलिन।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो,
2: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
1: हाँ जी
2: यार, कमाल कर दिया आपने। जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
1: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
2: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार। सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
1: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
2: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार सारे दिमाग।
1: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
2: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
1: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
2: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
1: अरे शर्म की क्या बात है सर,
2: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार। तूने किया क्या ये?
1: किसी का
2: कपड़े गायब है? एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
1: लेंस लगाया नहीं।
2: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो कपड़े
1: गाय?
2: नहीं
1: नहीं
2: मैं कल को
1: फोटो खींचे हुए।
2: अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
1: सर शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
2: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
1: नहीं साहब देखिए, केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
2: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
1: सर क्या बात, सुन के बनाया है?
2: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है। वो खड़ा है, जितने बराती आया सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
1: अरे नहीं सर।

0: गड़बड़ लग रही है मुझे।
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम में, ऐसी कोई बात नहीं
1: है यार, इतना बुरा लग रहा है। हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार।
0: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
1: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
0: कहाँ होता है बताइए।
2: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: पीठ पे छुरा क्यों घोंपे?
7: मत मारे कालीन भैया, बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
8: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
9: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
6: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
9: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
10: XL Entertainment presents Mirzapur the movie, releasing worldwide on 4th September at your nearest cinema.
11: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, assisting first time home buyers, also offering zero closing cost refinance option. For more information, call 732-339-3155. Log on to lionmtg.com.
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Oh no!
11: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
14: Amit Jetley of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour, Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
15: RK Jewels se khareediye diamond jewelry India wale price mein aur pay kijiye easy monthly installments mein only at RK Jewels Islam. Best quality, best price.
16: Tera kya hoga Kalia?
17: Sardar, maine aapka namak khaya Sardar.
16: Ab मिर्ची का
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
6: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
7: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
8: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिसे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
9: Food?
10: Yes.
9: Shopping?
10: Yes.
9: Entertainment?
10: Double yes.
9: और health fair?
10: Of course, सब कुछ एक ही जगह, Indo American Community Fair, September 12th or 13th, Sri Krishna Mandir, Morganville.
11: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
12: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
13: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
14: किसका है ये तो?
15: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
16: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. प्राउडली प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर।
17: फ्राइडे 11 सितंबर 8:30 PM विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ETS अरेना अटलांटिक सिटी।
16: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट। टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर एंड saiusainc.com।
18: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
19: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
18: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
19: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
18: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
8: आरके ज्वेल्स से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, ओनली एट आरके ज्वेल्स इसलिन। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
4: लिसनर एम आई बैक टू बैक गाना सुनेगा,
13: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
4: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: जी
1: की गल करनी है
0: तेरे मेरे बारे
1: की
0: यार बचपन तो लेके आज तक तू ही है
1: बचपन दी बात और सी
0: यार 10 साल हो गए
1: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ फोन ते गल करती हूँ
0: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
7: किसका है ये
8: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
9: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. proudly presents Sonu Nigam live in concert on his biggest tour ever.
10: Friday, 11th September, 8:30 PM. Witness history at Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City.
9: Do not miss the greatest musical night. Tickets available at Ticketmaster and saiusainc.com.
11: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थ केयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग।
12: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर।
11: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम को बेहतर समझ सके। तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर।
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: Sweet के साथ only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, attack.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: जय गुरुदेव. अवसर आवीने उभो छा आंगणे. चलो भेगा मळी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए. आपणे गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोडायो, जेमां
5: 13 सप्टेम्बर रविवार
4: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन. वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 732-357-8200. जय गुरुदेव.
6: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है.
7: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग एसडी कैपिटल फंडिंग विद अ रिन्यूड फोकस ऑन यू.
6: बाइंग अ होम, आवर रेट सेवर विल बीट योर लॉक्ड रेट.
7: ऑलरेडी अ होम ओनर, ड्रॉप योर मंथली पेमेंट्स विद आवर फ्री रेट अलर्ट सिस्टम. एसडी कैपिटल फंडिंग, सर्विस जिस पर सब करे भरोसा.
8: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजोकर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
9: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.
10: Inefficient,
11: very complex,
12: clumsy और
13: confusion ही confusion.
9: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
14: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
15: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
14: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
16: RK Jewels से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में. Only at RK Jewels, Islin. Best quality, best price.

0: साथ जीतूराज only on Mirchi. It's hot.
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बाद देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ई का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमार रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज, only on Mirchi. It's hot.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
6: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
7: I am not going to bed with you ever again.
6: But why? What did I do?
7: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
6: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
7: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
6: Yes, yes, yes, come soon. Honey!
7: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
6: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey.

0: New Jersey, or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
1: छुरा क्यों घोपे
2: मत मारे कालीन भैया
1: बाहुबली मारते नहीं मारने का ऑर्डर देते हैं
3: अब सही सुर लगा रहे मुमताज
4: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने
1: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी दूसरा कोई नहीं खुलेगा
4: नहीं खुला तो तोड़ देंगे
5: XL Entertainment presents Mirzapur the Movie, releasing worldwide on 4th September at your nearest cinema.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
8: Tera kya hoga, Kalia?
9: Sardar, main aapka namak khaya, Sardar.
8: अब मिर्ची का
10: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट

0: Beat ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: Hip attack.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: कि जसनीत नू निहाल सिंह वापस पिंड लेके आ पाएगा।
5: जे तू जसनीत नू वापस ना लेके आया पुत, तो मेरा भी मरी दा मुंह देखेगा।
4: कि पिंड वाले जसनीत नू वापस पिंड देख पाएंगे। वेखो सिंह वर्सेस कौर 2 रिलीजिंग ऑन 11 सितंबर स्टारिंग गिप्पी गरेवाल शहनाज गिल डायरेक्टेड बाय नवनीत सिंह प्रोड्यूस्ड बाय गिप्पी गरेवाल रवनीत कौर गरेवाल श्रीकांत मोहता एंड महेंद्र सोनी
6: आरके ज्वेल्स से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ओनली एट आरके ज्वेल्स इजलिन बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस
7: फूड
8: यस
7: शॉपिंग
8: यस
7: एंटरटेनमेंट
8: डबल यस
7: और हेल्थ फेयर
8: ऑफ कोर्स सब कुछ एक ही जगह इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेयर सितंबर 12th और 13th श्री कृष्ण मंदिर मॉर्गनविल
9: फॉर वेंडर्स एंड इंफॉर्मेशन विजिट www.krishnatemple.org
10: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155 लॉग ऑन टू linemtg.com
8: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी
7: दे सेल नेचुरल डायमंड्स बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस
8: डोंट फॉरगेट लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस कृष्णा ज्वेलर्स लेडीज फर्स्ट चॉइस
11: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
11: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज
11: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन
6: आरके ज्वेल्स से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ओनली एट आरके ज्वेल्स इजलिन बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस
12: तेरा क्या होगा कालिया
13: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
12: अब मिर्ची खा
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट

0: Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
1: पीठ पे छुरा क्यों घोंपे?
2: मत मारे कालीन भैया,
1: बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
3: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
4: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
1: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
4: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
5: XL Entertainment presents Mirzapur the movie, releasing worldwide on 4th September at your nearest cinema.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
9: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
7: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
10: नो
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
11: आरके ज्वेल्स से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में। ओनली एट आरके ज्वेल्स इसलिन, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
12: लिसनर में बैक टू बैक गाना सुनेगा,
13: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
12: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: साथ जीतूराज only on Mirchi, it's hot.
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर तो मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ई का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमार रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार, 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज only on Mirchi, it's hot.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Amit Jetley of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour, Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
5: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
6: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
5: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
6: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
5: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
7: आरके ज्वेल से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ओनली एट आरके ज्वेल्स इज़लिन। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
8: यार इस वीकेंड कोई जबरदस्त प्लान बताना।
9: अरे मेरा बच्चा है तू, चल तुझे हंसी की फुल डोज दिलवाता हूँ यार।
10: प्रयोग थिएटर ग्रुप के 50th फेस्टिवल में धुरंधर फेम राकेश बेदी और अनंत महादेवन का प्ले लास्ट ओवर और साथ में कलरफुल नौटंकी आला अवसर भी है।
11: संडे सितंबर 27th 4 PM जोएन मजेस्ट्रो परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर ईस्ट ब्रंसविक। बुक योर सीट्स एट प्रयोगथिएटर.com।
7: आरके ज्वेल से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ओनली एट आरके ज्वेल्स इज़लिन। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
12: यू आर लिसनिंग टू 103.3 एफएम HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी रेडियो।

0: Milci.
1: Buscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virba la burga. Milci, burga.
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी
3: यार, कमाल कर दिया आपने। जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार। सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
3: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार। सारे दिमाग
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से एक बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार। तूने किया क्या ये?
2: किसी का
3: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
2: लगाया नहीं
3: क्या? कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब
2: नहीं।
3: मैं कल को
2: फोटो खींचे।
3: अरे लेंस ऐसे
2: पूरे कपड़े
3: कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
2: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
3: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
2: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
3: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है। वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं।

0: इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
1: यार इस वीकेंड कोई जबरदस्त प्लान बताना।
2: अरे मेरा बच्चा है तू, चल तुझे हंसी की फुल डोज दिलवाता हूँ यार।
3: प्रयोग थिएटर ग्रुप के 50th फेस्टिवल में धुरंधर फेम राकेश बेदी और अनंत महादेवन का प्ले लास्ट ओवर और साथ में कलरफुल नौटंकी आला अवसर भी है।
4: संडे सितंबर 27th 4 PM जोएन मजेस्ट्रो परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर ईस्ट ब्रंसविक। बुक योर सीट्स एट prayogtheatre.com।
5: आर के ज्वेल्स से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ओनली एट आर के ज्वेल्स इज़लिन। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
7: कोहली गोज़ डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज़ आउट ऑफ द ग्राउंड।
6: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
6: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
9: एक ही होता है।
6: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
6: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. प्राउडली प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर।
7: फ्राइडे 11 सितंबर 8:30 PM विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ETS अरेना अटलांटिक सिटी।
6: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट। टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर एंड saiusainc.com.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
11: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
10: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
11: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
10: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue.
12: आरके ज्वेल से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ओनली एट आरके ज्वेल्स इज़लिन बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
13: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा
14: only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर, जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लगता
2: नहीं वो? मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना मेरी बात है। अच्छा चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: पीठ पे छुरा क्यों घोंपे? मत मारे कालीन भैया, बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
7: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
8: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
6: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
8: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
9: XL Entertainment presents Mirzapur the movie, releasing worldwide on 4th September at your nearest cinema.
10: RK Jewels से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में, और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, ओनली एट RK Jewels Islip, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
11: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
12: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
13: Buying a home? Our rate saver will beat your locked rate.
12: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice. Kiska
16: hai ye tu? Ek awaaz jisne romance ko ek nayi pehchan di, ek legend jiski melodies pichle 3 dashkon se har Hindustani ke dil mein dhadakti hain.
17: Amit Jetley of Sai USA Inc. proudly presents Sonu Nigam live in concert on his biggest tour ever.
18: Friday, 11th September, 8:30 p.m. Witness history at Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City.
17: Do not miss the greatest musical night. Tickets available at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
10: RK Jewels se khareediye diamond jewelry India wale price mein, aur pay kijiye easy monthly installments mein. Only at RK Jewels Islip, best quality, best price.
19: तेरा क्या होगा कालिया?
20: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
19: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
1: जिसके शब्दों में आग है,
0: जिसकी आवाज में जादू है,
1: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक।
0: आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
5: आरके ज्वेल्स से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ओनली एट आरके ज्वेल्स इजलिन। बेस्ट क्वालिटी, best price.
6: This September 12th and 13th, join us at the Indo-American Community Fair at Shri Krishna Mandir, Morganville.
7: Enjoy delicious Indian food, shopping, live cultural performances, a health fair, kids activities and much more.

0: Morning 10 a.m. to 7 p.m.
1: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
2: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
3: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.
4: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इंक प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन द रेवोल्यूशन टूर फ्राइडे सितंबर 11th एट हार्ड रॉक लाइव Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट SD Capital Funding. Beat your locked rate with our rate saver today.
8: आरके ज्वेल्स से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ओनली एट आरके ज्वेल्स इज़लिन. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.

आता है ना रात को सोया जाता है। उलझा रहता हूँ यादों में मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना जिंदगी को हंस के जीना। तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर तो मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखाओ और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Jai Gurudev. अवसर आवी ने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मळी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। आपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोडायो, जेमा
5: 13 सप्टेम्बर रविवार
4: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 7323578200। जय गुरुदेव।
6: आरके ज्वेल्स से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ओनली एट आरके ज्वेल्स इसलिन। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
6: आरके ज्वेल्स से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ओनली एट आरके ज्वेल्स इसलिन। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
9: अब
11: मिर्ची

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आके देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो? बहुत अच्छा है। सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो। बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: मैंने देखी खुद अपने हाथ से एल्बम। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं
1: क्या? कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो।

0: ना
1: नहीं
0: कल का अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से मैंने शेरवानी पहना की थी शेरवानी गायब है अंदर से सब दिख रहा है यार शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी
1: अरे
0: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे
1: नहीं साहब देखिए केस वेस की बात मत कीजिए इसने हमारा नाम है इलाके में
0: अरे हमारा हमारा भी कुछ था अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे
1: हैं सर क्या बात चुनके बनाया है
0: कोई फोटो चुनके नहीं बनाया मेरा बेटा खड़ा है कपड़े नहीं है बहू उसका चलो छोड़ो मैंने देखा भी नहीं है वो खड़ा है जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार
1: अरे नहीं सर कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे
0: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी आलो में ऐसी कोई बात नहीं
0: यार इतना बुरा लग रहा है हर आदमी के प्लेट में हर आदमी के हाथ में प्लेट है कपड़े है नहीं
1: दिखाइए
0: आपका कपड़े कैसे आप उसको सही करिए यार
1: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए
0: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है
1: कहाँ होता है बताइए
2: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Desi khana,
7: desi shopping,
6: desi culture,
7: aur desi entertainment.
6: Bas ek hi destination.
7: Indo-American Community Fair, September 12th aur 13th, Shri Krishna Mandir, Morganville.
8: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
9: Kisi zamane mein maa haathon se ghisti. प्यार से कूटती मुस्कुराकर पीसती अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए खुशियों के स्वाद चखती वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी दीप खाओ तो जानो
10: आरके ज्वेल से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ओनली एट आरके ज्वेल्स इसलिन बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस
11: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा
12: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
11: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
12: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानी
11: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन
13: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
14: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
13: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
15: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
16: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
15: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
17: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है
18: अरे माँ अभी भेजता हूँ टैप टैप सेंड है ना इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में
17: अरे वाह इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट
19: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069
0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं विराट एक ही होता है
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं पर बच्चन एक ही होता है
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन सिर्फ एक ही होता है
20: एक ही होता है
0: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है रेडियो का बच्चन कहो या कोहली न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं इट्स हॉट

0: एक सुपरस्टार जो कहीं छुपा बैठा है,
1: जिसके शब्दों में आग है,
0: जिसकी आवाज में जादू है,
1: और उस छुपे हुए टैलेंट को चाहिए बस एक ऐसा मंच जो पूरी दुनिया को हिला दे। इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
0: आज ही रजिस्टर करें, व्हाट्सएप अस हॉट माइक और भेज दें 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
1: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
1: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: Kiska hai ye tu?
9: Ek awaaz jisne romance ko ek nayi pehchan di, ek legend jiski melodies pichle 3 dashkon se har Hindustani ke dil mein dhadakti hain.
10: Amit Jetley of Sai USA Inc. proudly presents Sonu Nigam live in concert on his biggest tour ever.
11: Friday, 11th September, 8:30 p.m. Witness history at Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City.
10: Do not miss the greatest musical night. Tickets available at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
12: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ, सिर्फ डायलॉग ही है।
13: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
12: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
11: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
14: आरके ज्वेलर्स से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में, और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, ओनली एट आरके ज्वेल्स इजलिन। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
15: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
16: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
15: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: निहाल सिंह नू बंगाली कुड़ी नाल किवें होया प्यार?
6: यू बॉयफ्रेंड?
7: नो बॉयफ्रेंड।
6: हसीम, नो गर्लफ्रेंड।
5: कि निहाल बंगाली कुड़ी दी सच्चाई फड़ पाएगा? वेखो सिंह वर्सेस कौर 2 रिलीजिंग ऑन 11 सितंबर स्टारिंग गिप्पी गरेवाल शहनाज गिल डायरेक्टेड बाय नवनीत सिंह प्रोड्यूस्ड बाय गिप्पी गरेवाल रवनीत कौर गरेवाल श्रीकांत मोहता एंड महेंद्र सोनी।
8: शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
9: अरे माँ, अभी भेजता हूँ। टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
8: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
10: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
11: आरके ज्वेल्स से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ओनली एट आरके ज्वेल्स इसलिन बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
12: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन द रेवोल्यूशन टूर फ्राइडे सितंबर 11th एट हार्ड रॉक लाइव अटलांटिक सिटी। बुक नाउ एट ticketmaster.com एंड saiusainc.com।
13: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
14: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
13: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
14: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
13: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
15: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
11: RK Jewels se khareediye diamond jewelry India wale price mein aur pay kijiye easy monthly installments mein only at RK Jewels Islim best quality best price.
16: Tera kya hoga Kalia?
17: Sardar, maine aapka namak khaya Sardar.
16: Ab mirchi kha.
18: Radio Mirchi, it's hot.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Ghana Indie Top 10.
2: Kanika ke saath. On Mirchi.
3: Mirchi sun rahe hain aap. Bandi ka naam hai RJ Kanika. It's time for the hottest countdown of the week. This is the Ghana Indie Top 10, only show on Mirchi जहाँ हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं. हफ्ते के टॉप 10 गानों में दो नई एंट्रीज हैं इस हफ्ते. हम अपना 90s एंड 2000s का कैसेट क्लासिक भी आपके लिए प्ले करने वाले हैं. ऑल दिस एंड मोर एट आरजे कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम पर आकर स्टे कनेक्टेड विद मी. कोई गाना बताना है, सजेशन है, बिंदास आके हिट मी अप. शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10, बंजारी द आर्टिस्ट का गाना. गाने का नाम है बरसात. दो हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद एक नई नवेली एंट्री, हितेन बादशाह का गाना फीचरिंग शर्वी यादव. गाने का नाम ही है बैंगर. दिस न्यू बादशाह ट्रैक डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बदी का नाम है कनेका. एंजॉय. नंबर 10.

0: Bang.
1: Bow. Yeah. भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौको ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: boy.
1: बादशाह की आवाज फीचरिंग शर्वी यादव, हितेन का प्रोडक्शन, गाने का नाम ही है बैंगर. दिस सॉन्ग डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. एक गाने को बैंगर से वोकलिस्ट नहीं बल्कि प्रोड्यूसर बनाता है अपनी बीट से. इट्स टाइम टू मीट दिस बैंगर प्रोड्यूसर.
2: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
1: Hello, this is the Ghana Indie Top 10. Baddi ka naam hai RJ Kanika. Connect with me Instagram par, follow kare, mera handle is @RJKanika. Koi gaana share karna hai, baatein batani hai, bindaas aake hit me up. Pichle 6 saal se jitne gaane Badshah ke is show par debut karte hain, jo main aur aap sunna band nahi kar paate hain, un gaano mein ek naam common hota hai. Wo naam hai Hiten ka. हितेन इज अ सुपरस्टार प्रोड्यूसर जो बहुत रिपीटेडली बादशाह के साथ काम करने लगे हैं. बट अगर मैं उनका डिस्कोग्राफी देखना शुरू करूं तो इट्स नॉट जस्ट कि वो बादशाह के फेवरेट प्रोड्यूसर हैं. उन्होंने किंग के साथ, एमसी स्क्वायर, पैराडॉक्स, रफ्तार जैसे आर्टिस्ट के साथ गाने प्रोड्यूस करे हैं. तो फिर सोचने वाली बात ये है दैट हम प्रोड्यूसर पे इतना ध्यान क्यों नहीं देते हैं. बीट तो वही बना रहे हैं. उस पूरे गाने को पैकेज करना इस वे में दैट मैं और आप उसे सुनना बंद ना कर पाए, दैट इज द प्रोड्यूसर इन द हाउस. एंड हितेन डिजर्व्स द बिगेस्ट स्पॉटलाइट. साल 2017 में दैट क्रिंच पॉप सॉन्ग बाय ढिंचैक पूजा, सेल्फी मैंने ले ली आज, वो इतना डाइजेस्टेबल वायरल गाना बना था बिकॉज हितेन ने उस गाने का मिक्स बनाया. वहां से लेके अब तक वो किसी एक लेन में स्टिक नहीं करे. बादशाह का गाना आवारा प्रोड्यूस किया एंड उसके बाद बादशाह की पूरी एल्बम एकता राजा इज बीन प्रोड्यूस्ड बाय हितेन, जिसमें करण औजला के साथ गाने हैं, अरिजीत सिंह एंड बादशाह का सोलमेट. This gorgeous song is produced by Hiten. And what's so amusing about all of this is कि वो किसी भी म्यूजिकल बैकग्राउंड से नहीं आते, पंजाब को बिलोंग करते हैं. उन्होंने प्रोडक्शन अपने घर पे वीडियोस देख के हाउ टू मेक बीट्स एक्चुअली सर्च करके सीखना शुरू किया, लोगों को रीच आउट करके फेसबुक पे, प्रॉपर DIY प्रोड्यूसर. पर अपने करियर में वो अपना सबसे बड़ा पिवट पॉइंट ये वाला गाना मानते हैं. साल था 2021, बादशाह ने हितेन को एक इंस्टाग्राम रील भेजी एक वॉइस नोट के साथ कि यार कुछ बीट बनाना इस पे. दिस वायरल ऑडियो बचपन का प्यार जो हर जगह चल रहा था, हितेन ने 30 से 40 मिनट में पूरा ऑडियो बनाया, भेज दिया बादशाह को एंड रेस्ट इज हिस्ट्री. द सॉन्ग ब्लू अप लाइक क्रेजी. सो इन अ वे इसीलिए हितेन कहीं ना कहीं बादशाह को अपना गाइड मानते हैं, मोर देन एन आर्टिस्ट जिनके साथ वो काम करते हैं. बट माई फेवरेट क्वालिटी अबाउट हितेन एज अ प्रोड्यूसर इज दैट ही लेट्स अ सॉन्ग बी, वो गाने को सांस लेने देते हैं. एंड दैट्स व्हाई ही इज द चोजन प्रोड्यूसर फॉर बादशाह, किंग. काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो गाना भी इज व्हाट इट साउंड्स लाइक बिकॉज ऑफ इट्स प्रोड्यूसर. गाना संजू राठौर का है पर उसके प्रोड्यूसर हैं जी स्पार्क, जिन्होंने गुलाबी साड़ी भी प्रोड्यूस किया था संजू के साथ. हम रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, संजू राठौर की आवाज में जी स्पार्क की प्रोडक्शन. गाने का नाम है बैंगल्स. 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, बैंगल्स इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
3: Number 8.

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।

0: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
1: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
2: Amit Jetley of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour. Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
3: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
4: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. India Bridal Store.
3: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
4: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
3: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
5: Beta, shaadi next week hai aur tumhara abhi paise bhejta hu, sirf dialogue hi hai.
6: अरे माँ अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में.
5: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
7: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
8: आरके ज्वेल्स से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में. Only at RK Jewels Islin. Best quality, best price.
9: Ghana Indie Top 10.
10: Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
11: Number 6.

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया।

0: अरूप खान की आवाज है, गाने का नाम है गुच्ची। ऑल द हमारे दिमाग में अलग वीडियो चल रही है। दिस सॉन्ग डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने फरक का गाना सुना तारे। 5 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello, hello. स्वागत है आपका। This is the Gaana Indie Top 10। बंदी का नाम है RJ Kanika। Instagram पर जाओ, follow करो। Follow करना बिल्कुल free है। मेरा handle is @RJKanika। कोई गाना share करना हो, बिंदास आके hit me up। गाना नंबर 6 पर हमने सुना Gucci by अरूप खान, जिसको actually हम सब ने Instagram से ही discover किया है। But the most interesting thing about this song is कि guys, ये गाना 2020 में आया था, लेकिन 2026 में only because of Ravi Kishan this song found its moment। वो एक इवेंट पे स्टेज पर जा रहे थे और वहां जगह नहीं थी, तो एक बहुत ही क्वर्की साइड वॉक करी रवि किशन ने। वो एडिट विद गुच्ची ऑन टॉप ऑफ इट वो हर जगह वायरल हो चुका है। एंड उस मीम की वजह से एक 6 साल पुराना गाना वापस हमारे काउंटडाउन में आ गया है। और ऐसा होता है, लाइक सोशल मीडिया वंस इन अ वाइल एक गाने को, एक आर्टिस्ट को हमारे ऑर्बिट में लाके खड़ी कर देती है। एंड दैट बिकम्स अ वेरी डिफाइनिंग मोमेंट फॉर एनी आर्टिस्ट। सारा प्रेशर उन पे है, सारी आंखें उनकी तरफ है कि क्या ये वन हिट वंडर रह जाएंगे या ये इसके बाद कुछ करेंगे। एंड एक आर्टिस्ट के लिए बहुत प्रेशर वाला जोन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई रियली डोंट थिंक वन हिट वंडर इज अ बैड थिंग टू से। अगर आप उस गाने के रिस्पेक्ट में देखो तो वो गाना इतना अच्छा है कि कोई उसको इग्नोर नहीं कर पाया। बट यस, ऑब्वियसली इट रेजेस क्वेश्चंस कि इसके आगे क्या होगा। आई थिंक बहुत सारे आर्टिस्ट इस सवालों से गुजरे हैं। वन ऑफ द नेम्स व्हिच आई थिंक इज अ पोस्टर बॉय ऑफ इट इज AP Tillno। साल था 2020, ब्राउन मुंडे वाज एवरीवेयर। अचानक उस गाने की वजह से पूरी दुनिया उन्हें जानती थी। एंड हर किसी का यही सवाल था कि क्या ये वन हिट वंडर है या इसके बाद ये कुछ और बना पाएंगे। एंड फिर जो हुआ, दैट्स फॉर द हिस्ट्री बुक्स, राइट? आई डोंट थिंक AP ने किसी भी सवाल का जवाब दिया। उन्होंने सिर्फ नए गाने रिलीज किए। इवन इफ ही वॉज बींग कॉल्ड वन हिट वंडर, तो उन्होंने वो उसको अपने फेवर में लिया और दिल नू समर हाई जैसे गाने बैक टू बैक रिलीज करे। एंड एवरी सॉन्ग जस्ट प्रूव दैट ही इज सो इन इट। एंड जनता ने भर भर के प्यार दिया उनके नए गानों को। सो यार, बीइंग कॉल्ड वन हिट वंडर इज नॉट अ बैड थिंग। ऑफ कोर्स द प्रेशर देन बिगिंस कि इसके बाद क्या करना है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। AP Tillno का हिट मोमेंट अलोंग विद गुरिंदर गिल, शिंदा कालो, जी माइनर, 2020 में आया ये गाना ब्राउन मुंडे, टिल डेट इज लाइक एन एंथम फॉर एवरीवन। ब्राउन मुंडे इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison. Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
5: RK Jewels se khareediye diamond jewelry India wale price mein aur pay kijiye easy monthly installments mein only at RK Jewels Islam. Best quality, best price.
6: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
7: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
6: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
7: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।

0: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
1: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
2: किसका है ये तू?
3: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
4: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इंक प्राउडली प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर।
5: फ्राइडे 11 सितंबर 8:30 PM विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ईटस अरेना अटलांटिक सिटी।
4: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट। टिकट्स अवेलेबल एट टिकटमास्टर एंड saiusainc.com।
6: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
7: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे।

0: बंजारे की आवाज, उन्हीं के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है बैरन। जब भी गाना चल रहा होता है मुझे लगता है ये गाना बंद ही ना हुए। सच इज द इफेक्ट ऑफ दिस सॉन्ग। 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है। दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनेका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKaneka। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। पर कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो नए नहीं होते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तो बहुत फेमिलियर साउंड करते हैं। दैट हैज टू बी अ क्लासिक। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहां पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वाज एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है सानी धापा बाय द वन एंड ओनली कलोनियल कजिन्स। गाना 1996 में आया था बाय द सेल्फ टाइटल्ड डेब्यू एल्बम कॉल्ड कलोनियल कजिन्स। दिस एल्बम वाज सच अ रेजर। दिस वेंट प्लैटिनम, ये चार्ट्स पे रहा एंड कलोनियल कजिन्स इंडी पॉप स्पेस में घर घर का नाम बन गए थे। बट व्हाट्स वेरी इंटरेस्टिंग इज दैट अगर आप इन दोनों आर्टिस्ट को देखें, हरिहरन जी एंड लेस्ली लुइस, ये दोनों म्यूजिक के इतने डिफरेंट स्पेक्ट्रम से आते हैं, दैट मेड कलोनियल कजिन्स सो इंटरेस्टिंग एंड टिल डेट वन ऑफ द मोस्ट फ्रेशेस्ट एक्ट जो हमने पॉप सीन में देखा है। एक तरफ है हरिहरन जी, अ क्लासिकल सिंगर, दूसरी तरफ यू गॉट लेस्ली लुइस हु इज ऑल अबाउट द रॉक एंड रोल। लेस्ली लुइस ने बहुत सारे वेस्टर्न प्रोडक्शन एंड साउंड से इंट्रोड्यूस करवाया एंड हरिहरन जी इज द मोस्ट ग्राउंडेड क्लासिकल वॉइस दैट वी हैड नोन। एंड इन दोनों ने मिलके जब कलोनियल कजिन से सानी धापा किया, एवरीबडी जस्ट सैट एंड आज तक भी आई एम इन ऑ। मैं जितनी बार ये गाना सुनती हूँ, इट स्टिल साउंड सो फ्रेश कि बिल्कुल अभी प्रोडक्शन हुआ है इस गाने का। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। वन थिंग आई एब्सोल्युटली लव अबाउट दिस सॉन्ग इज कि ये एक बॉक्स में नहीं बैठा है, क्लासिकल एंड रॉक के फ्यूजन की जगह है एंड सानी धापा इज अ प्रूफ ऑफ दैट। कलोनियल कजिन्स का 1996 का गाना सानी धापा इज अ कैसेट क्लासिक ऑफ द वीक। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: एनीवे ये गाना 1996 में आया था, लेकिन आज 2026 में आल्सो आई कैन से दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल पॉप साउंड्स आउट देयर. हरिहरन जी एंड लेसी लुईस सर की आवाज में दैट वाज सानी धापा बाय कॉलोनियल कजिन्स ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक एट आरजे कनिंग ऑन इंस्टाग्राम पर. ऑन बताओ मुझे यार 90s 2000s के यही वाले गाने व्हिच स्टिल मेक्स अस फील लाइक इंडी पॉप का गोल्डन एरा तो 90s and 2000s में था. Which is your favorite? मुझे आके बताओ. We might feature your song next week. Now back to the countdown. अगले वाले गाने की बारी. मिट्टा रॉर की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, मिट्टा रॉर एंड स्वरा वर्मा की आवाज में. गाने का नाम है शीशा. 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. शीशा इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 3.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Indie Top 10
2: Kanika ke saath on Mirchi.
3: Mirchi par, this is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show where we bring to you the hottest pop songs of the week. हफ्ते के टॉप 10 पॉप गानों में दो नई एंट्रीज थी. हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक भी हमने आपके लिए प्ले किया. गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं. बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, एक क्विक रीकैप लेते हैं राइट फ्रॉम द टॉप. बंजारे का बरसात दिस वीक ऑन गाना नंबर 10.
4: प्यारे सा मिलना नहीं, कौन मेरे जैसा चाहेगी.
3: उसके बाद एक नई नवेली एंट्री हुई बादशाह हितेन शर्वी यादव का बैंगर डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. संजू राठौड़ का बैंगल्स 13 हफ्तों से गोइंग स्ट्रॉन्ग दिस वीक वॉज ऑन गाना नंबर 8. कहने तो नहीं चाहिए बट दिस सॉन्ग इज लाइक अ फेवरेट. फरक का तारे 5 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर गोइंग स्ट्रॉन्ग दिस वीक. तारे वाज ऑन गाना नंबर 7. अरूब खान का गुच्ची हैज मेड अ डेब्यू. एंट्री मारी है सीधा ऑन गाना नंबर 6. अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. उड़ी उड़ी दिस वीक वाज ऑन गाना नंबर 5. बंजारे का बैरन 23 हफ्तों से गोइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग दिस वीक ऑन गाना नंबर 4.
4: मुन्ने सांग सांग रखे तेरे झंझरा के जोड़े मेरी गेल.
3: मिट्टा रॉर का शीशा स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग दिस वीक ऑन गाना नंबर 3. It's time for the top 2 songs of the week. And इस बार वाले जो टॉप दोनों गाने हैं आपने एक्सपेक्ट नहीं करे हैं बिकॉज काफी रीशफल हुआ है. पिछले हफ्ते से एक पोजिशन ऊपर जम्प करके हर्ष नुस्सी का गाना, गाने का नाम है साडी सुन. हर्ष नुस्सी दीप क्लेयर के लिरिक्स सुनी की कॉम्पोजिशन. ये गाना एक पोजिशन ऊपर जम्प मार के दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 2. उसके बाद न्यूमेरो ऊनो सॉन्ग ऑफ द वीक इज अ OTT रिलीज. गाने का नाम है दरमिया, रेखा भारद्वाज राघव कौशिक की आवाज. राघव कौशिक का म्यूजिक. दिस इज फ्रॉम मुसाफिर कैफे. अ वेरी क्यूट लव स्टोरी बट अ इवन क्यूटर सॉन्ग. दरमिया डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 1. तो ये दोनों गाने बैक टू बैक साडी सुन नंबर 2 पे है, फिर दरमिया नंबर 1 पे. ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
5: नंबर 2.
6: हाउ चुप

0: साथ जीतूराज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बाद देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज only on मिर्ची it's hot।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
5: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in.
3: बॉलीवुड को समझना है तो एक बात मान लीजिए, अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। जिस फिल्म को इंडस्ट्री सेफ समझती है, ऑडियंस उसे इग्नोर कर देती है, और जिस फिल्म को देखकर पहला रिएक्शन आता है कि भाई ये क्या बनाई है, कभी कभी वही थिएटर्स में हंगामा कर देती है। Whether it's a Dhurandhar 2, Awarapan 2, Toxic या फिर हैवान, and then of course you got the Dhamals, the Cocktails and the Welcome to the Jungles. मतलब ऑडियंस एक अजीब सी डिमांड कर रही है, सरप्राइज भी चाहिए और एंटरटेनमेंट भी चाहिए, बस एक चीज नहीं चाहिए, प्रिडिक्टेबिलिटी। शायद बॉलीवुड की सबसे इंटरेस्टिंग बात आज यही है। इंडस्ट्री फ्यूचर की तरफ भाग रही है, लेकिन ऑडियंस कभी कभी उसे पास्ट की तरफ खींच लाती है। जैसे आज शान की आवाज, सैफ अली खान लगभग 2 दशक बाद, और हैवान से ही इस बार का काउंटडाउन होता है किक स्टार्ट। दिस इज गाना नंबर 20, मेरे हीरो है वो।
4: नंबर 20। लेके जन्म पहला पहला कदम, जब चलते हैं हम उंगली थामे कोई,
5: लिख रहे हो ना?
4: तुम भी गाओ।

जब कोई गाना खत्म होता है हम तुरंत उस टाइम पर कुछ बोलते नहीं, बस 2-3 सेकंड्स की वो खामोशी होती है। ना लिरिक्स की कोई एक लाइन दिमाग में अटकी होती है, ना म्यूजिक का कोई पर्टिकुलर पीस, बस आवाज अंदर कहीं रुक गई होती है। तो फिर आओ, मेरे लिए उन्हीं गानों में से एक है। और शायद म्यूजिक की सबसे खूबसूरत बात भी यही है, हर कनेक्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं होता। इसलिए आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, म्यूजिक हटाने वाला हूं, प्रोडक्शन हटाने वाला हूं, सिर्फ आवाज आप तक पहुंचाना चाहता हूं।

बस अभी जो सुना उसमें अरेंजमेंट नहीं है, फिर भी आवाज पहचान में आ जाती है। आवाज है अरमान मलिक की। एक वक्त था जब रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए बॉलीवुड की सबसे इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल यंग आवाजों में अरमान का नाम आता था, और फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक में अपनी अलग दुनिया बनाई। और शायद इसलिए नंबर 18 पर आता हुआ ये ब्रांड न्यू गाना सिर्फ एक नई एंट्री नहीं लगती, कभी कभी कमबैक अनाउंसमेंट से नहीं होता, बस आवाज दोबारा सुनाई देती है और आप खुद समझ जाते हैं। प्रेम कीटाणु से अरमान मलिक इज बैक विद अ सॉन्ग कॉल्ड कहो तो, एंड इट डेब्यूज ऑन नंबर 18।

0: हेलो
1: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपको?
0: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
1: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई हैं ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
0: क्या तुझे पागल लगा?
1: नहीं वो मैडम, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
0: क्या कहना है?
1: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना मेरी बात है। चारू फोन मत रखना। हेलो, चारू में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स वेयर ट्रेडिशन मीट स्टाइल। Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थकेयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग।
5: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर।
4: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके। तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर।
6: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ थाउजेंड ईयर ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज कम्स द नाम, द सेम ट्रेडिशनल टेस्ट, फ्लेवर एंड फ्रेशनेस गारंटीड।
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: Amit Jetli of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour, Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
11: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
11: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzilin।
12: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
13: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
12: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
14: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
15: आरके ज्वेलर्स से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में, और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, ओनली एट आरके ज्वेल्स इज़लिन, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
16: लिसनर में बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
2: ओनली ऑन 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

मदहोश नाम ही ऐसा है कि वॉल्यूम बढ़ाने से पहले ही दुनिया थोड़ी धीमी पड़ जाती है और ये एक कॉम्प्लीमेंट है और यही कॉम्प्लीमेंट बहुत सारे सिंगर्स को भी दिया जा सकता है और वैसे ही एक सिंगर है जिनकी मैं बात करना चाहता हूँ, नाम है मोहम्मद इरफान। यार इरफान की आवाज में हमेशा से एक अजीब क्वालिटी थी, वो आवाज आपको इम्प्रेस करने नहीं आती थी, वो सीधा मूड बदल देती थी। फिर मोहब्बत याद है आपको, कितनी बातें की हैं मैंने इस गाने की इस शो पर। सॉन्ग वो संग बाय 3 सिंगर्स, अरिजीत सिंह, साइम भट्ट एंड मोहम्मद इरफान। 3 आवाजें एक गाना, अरिजीत एक दास्तान बन गए। इरफान की आवाज दास्तान बनने से पहले ही जैसे खामोश हो गई, लेकिन आवाज कहीं नहीं गई।

0: कुछ होता है यार दिल में, क्या आवाज है, और शायद दर्द यही है। कभी कभी टैलेंट का खत्म होना प्रॉब्लम नहीं होता, बस उसके पास पहुंचने वाले वो मौके खत्म हो जाते हैं। इस हफ्ते धमाल 4 का कहर संग बाय गुरु रंधावा नंबर 16 पर है। क्योंकि हम इरफान की बातें कर रहे थे, कुछ गाने वक्त के साथ पुराने नहीं होते, वो बस आप ही का एक पुराना वर्जन वापस ले आते हैं। इरफान के लिए वो वक्त था एक विलन का। मिथुन ने तुम ही हो के बाद एक नई आवाज को चुना और बंजारा में मोहम्मद इरफान वो आवाज बन गए। दिस सॉन्ग फ्रॉम एक विलन इज माई रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। कभी न्यू जर्सी की स्ट्रीट पर,
1: कभी बाथरूम की चार दीवारों के बीच,
0: कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच छुपे होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट,
1: द माइक इज रेडी। आर यू इंडियन अमेरिकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक। अभी रजिस्टर करें, व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए 9033647244 पर। ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Izzylin।
5: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
6: किसका है ये
7: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
8: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. प्राउडली प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर।
9: फ्राइडे 11 सितंबर 8:30 PM विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ETS अरेना अटलांटिक सिटी।
8: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट। टिकट्स अवेलेबल एट Ticketmaster एंड saiusainc.com।
10: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
11: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 Oak Tree Road, Izzylin, न्यू जर्सी।
12: वॉरिड अबाउट हाउ योर चाइल्ड विल स्टे कनेक्टेड विद देयर रूट्स और मेंटेन आवर ट्रेडिशंस?
13: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
12: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
14: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
15: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
14: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
15: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
14: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
16: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
17: अरे माँ, अभी भेजता हूँ। टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
16: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
9: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
18: आरके ज्वेल से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ओनली एट आरके ज्वेल्स इज़लिन। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
19: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
19: अब

0: मिर्ची का
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
2: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 15

धुरंधर 2 का वो गाना जो हमारे जहन से हटने का नाम नहीं लेता, बिकॉज कुछ गाने फिल्म के सीन्स को यादगार बना देते हैं, एंड आरी आरी और नंबर 15 डिड जस्ट दैट। लेकिन कभी कभी कोई गाना फिल्म से निकलकर आपकी जिंदगी में जगह बना लेता है। आवारापन 2 का एक ब्रांड न्यू गाना पिया घर आया मेरे लिए एग्जैक्टली वैसा ही है। अखिल सचदेव की आवाज, उन्हीं के शब्द, उन्हीं का म्यूजिक, सब मिलकर इस गाने को सिर्फ एल्बम का एक और ट्रैक नहीं रहने देते। तो फिर आओ और तेरा मेरा रिश्ता, दे वर ऑल अबाउट नॉस्टैल्जिया, लेकिन पिया घर आया कुछ और ही है। ये वो गाना है जो आप अपने साथ घर ले जाते हैं, और किसी गाने की असली कसौटी थिएटर्स में नहीं होती, कभी कभी वो होती है पहाड़ों पर एक लंबी ड्राइव के वक्त, बारिश के वक्त, तब ठंडी हवा चलती है और अचानक आप खुद को गाते हुए पाते हैं बिना ये सोचे कि कोई सुन भी रहा है या नहीं। मैंने इस गाने को बार बार लूप पर सुना और मुझे लगता है कुछ साल बाद जब हम इस एल्बम को याद करेंगे, आवारापन 2 को याद करेंगे, पिया घर आया उन ट्रैक्स में होगा जो वक्त के साथ और खूबसूरत बन जाएगा। बाय द वे, आवारापन 2 का म्यूजिक एक इंटरेस्टिंग चीज कर रहा है, वो सिर्फ पुरानी याद को रिपीट नहीं कर रहा, उसके साथ नई यादें भी बना रहा है। डेब्यू हो रहा है अखिल सचदेव की इस मुकम्मल कॉम्पोजिशन का। दिस इज पिया घर आया फ्रॉम आवारापन 2। नंबर 14।

0: शरारत इस हफ्ते नंबर 12 पर है, लेकिन आज बात फिल्म के इंटेलिजेंस की नहीं, एक और काइंड ऑफ इंटेलिजेंस की। देखिए, अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा है तो काफी सारे एक्टर्स को उनकी जनरल नॉलेज पे ट्रोल किया जाता है। हम किसी एक्टर को पकड़ते हैं, 2-3 सवाल पूछते हैं और जब जवाब नहीं मिलता तो तुरंत हम वर्डिक्ट दे देते हैं, अरे इसको तो इतना भी नहीं पता। लेकिन एक एक्टर है जिन्होंने इसके लिए एक मुंह तोड़ जवाब दिया है और वो एक्टर है कुणाल खेमू, और उन्होंने इस थिंकिंग को एक सिंपल बात से नकार दिया है।
1: हर चीज में हमको एक्सपर्ट क्यों समझ रहा है? क्यों मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पहली पिक्चर किसने बनाई थी, आपको नहीं पता होगा तो मुझे क्यों पता होना चाहिए कि हर देश का प्रधानमंत्री कौन है या कौन सा बिल कब पास हुआ था, ये जंग हमने कब जीती थी? नहीं पता होगा ना मुझे, अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट जूतों में, तो मैं अगर आपको जर्नलिस्ट को पूछूं कि आपको पता है एयर जॉर्डन 1 पहला कब आया था और उसको नहीं पता होगा, मैं फुद्दू, तेरे को कुछ नहीं आता, ऐसे थोड़ी होता है। अबे मेरी जिंदगी में जो रेलेवेंट है वो मुझे पता होगा, तेरे जो तुझे पता होगा।
0: आई गेट व्हाट कुणाल इज सेइंग, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक दुनिया होती है यार। किसी को पॉलिटिक्स याद रहती है तो किसी को सिनेमा, और किसी को जूतों के बारे में वो डिटेल्स पता होती हैं जो हम गूगल करके भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आप कुणाल के करियर को जरूर गूगल कीजिएगा, क्योंकि उनका करियर बहुत इंटरेस्टिंग है। गोलमाल और लूट केस की कॉमेडी से लेकर उनकी खुद की डायरेक्टोरियल डेब्यू मडगांव एक्सप्रेस तक, एंड देन यू ऑल्सो गॉट द डार्कनेस ऑफ मलम। एक एक्टर को लिमिट करना ऑडियंस का शॉर्टकट है, लेकिन अच्छा एक्टर वो होता है जो खुद इस लिमिटेशन को ही तोड़ दे। इस हफ्ते धमाल 4 का गाना साड़ी नंबर 11 पर है, लेकिन क्योंकि हमने मलंग की बात की थी तो उसमें कुणाल के डार्क साइड को मोहित सूरी ने एक अलग ही टेक्सचर दिया था, माइकल रॉड्रिग्स। उस फिल्म की एक धुन जो बनाई है मिथुन ने और उसे गाया है अरिजीत सिंह ने, और इन दोनों के लिए दिस इज लाइक दाल चावल फॉर लाइफ। दिस इस चल घर चलें।

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot.
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक.
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक.
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ. व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची.
2: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
3: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
7: आरके ज्वेल्स से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में. ओनली एट आरके ज्वेल्स इजलिन. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे.
7: आरके ज्वेल्स से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में. ओनली एट आरके ज्वेल्स इजलिन. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
13: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन द रेवोल्यूशन टूर फ्राइडे सितंबर 11th एट हार्ड रॉक लाइव अटलांटिक सिटी. बुक नाउ एट ticketmaster.com एंड saiusainc.com.
14: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स.

कभी किसी गाने को सुन के बस इतना कहा है यार कितना फ्रेश साउंड करता है, लेकिन ये जो वर्ड है फ्रेश, ये आखिर होता क्या है? इसे नया साउंड या फिर एक अजीब सा इंस्ट्रूमेंट या एक ऐसा हुक जो पहले कभी ना सुना हो? शायद फ्रेशनेस नॉवेल्टी नहीं है, फ्रेशनेस वो फीलिंग है जब गाना खत्म होता है और दिमाग तुरंत किसी और गाने का रेफरेंस ढूंढने नहीं लगता, बस अच्छा लगता है। अमित त्रिवेदी का ये गाना रातों में आना मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही है, इट्स फील गुड। कुमार भाई के अल्फाज, अमित की खुद की ब्रीजी आवाज और इस फिल्म वाइब के विजुअल्स, गाना कुछ प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा है, ना ट्रेंड्स के पीछे भाग रहा है, ना शोर करता है, बस अच्छा लगता है। और कभी कभी गाने का काम इतना ही होना चाहिए, दिल को हल्का कर देना। कुणाल खेमू की आने वाली फिल्म वाइब का ये गाना रातों में आना नंबर 10 पर डेब्यू कर रहा है और फ्रेशनेस का एक और मजा है, हर नई आवाज अपना पहला इंप्रेशन जरूर लेकर आती है। इस हफ्ते आवारापन 2 एल्बम में जिन्होंने डेब्यू किया, सुबोध शर्मा, ही इज अप नेक्स्ट। मिथुन का म्यूजिक, दिस इज वेजनोट, दिस टाइम ऑन नंबर 9।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: मुकेश जी
1: कौन
2: मुकेश जी मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से आपने जो 1000 दी थी ना उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई
2: हाँ वो नहीं हो पाया सर
1: नहीं हो पाया
2: सर वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी अच्छा सर आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की सर वो भी हो नहीं पाई है वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी
1: नहीं क्या नहीं पाया तुम्हारे यार रोज गए तुम्हें जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया क्या मजाक ही क्या है ये
2: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ वो एक
1: क्या समझ रहे हो भाई
2: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं अच्छा मुकेश जी आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है ब्रेक काम नहीं कर रहे सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर वो
1: ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया मुझे फोन करना है मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया
2: नहीं सर
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे
2: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी
1: है
2: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या
2: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ मतलब हम
1: क्या करा दूँ
2: सर मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की
1: कैसी FIR दिमाग खराब हो गया तेरा पागल तो नहीं है तू
2: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम
1: गुस्सा ना करूँ नई गाड़ी थी हमारी
2: नहीं सर आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारे भी तो उसमें कुछ गया है हमने भी तो ग्रीस लगाया
1: उसमें
2: ग्रीस लगाया उसमें हमने पेट्रोल डाला है
1: ग्रीस कितने का 5 रुपए का लगा आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में तुम्हारे वर्कशॉप में
2: अच्छा सर
1: मुझे चाहिए अपनी वापस
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें अच्छा सर ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा
3: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ मुर्गा बना दिया तुम्हारा
1: तो जान निकाल दी हमारी
3: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी आपकी वर्कशॉप पे बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए गुस्सा खत्म करिए
1: कुकड़ू कु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है लेकिन शेर

0: करने के लिए
1: घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री
2: सिंस ओवर 15 इयर्स. लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
3: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
4: जय गुरुदेव. अवसर आवीने उभो छा आंगणे. चलो भेगा मळी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए. आपणे गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोडायो, जेमा
5: 13 सप्टेम्बर रविवार
4: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन. वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 732-357-8200. जय गुरुदेव.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice. Kiska
8: hai ye tu? Ek awaaz jisne romance ko ek nayi pehchan di, ek legend jiski melodies pichle 3 dashkon se har Hindustani ke dil mein dhadakti hain.
9: Amit Jetley of Sai USA Inc. proudly presents Sonu Nigam live in concert on his biggest tour ever.
10: Friday, 11th September, 8:30 p.m. Witness history at Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City.
9: Do not miss the greatest musical night. Tickets available at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
11: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
12: to aaye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
11: Shaadi shopping ka complete destination. Fashion queen.
12: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
13: आर के ज्वेल से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में. ओनली एट आर के ज्वेल्स इज़लिन. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
14: यार इस वीकेंड कोई जबरदस्त प्लान बताना.
15: अरे मेरा बच्चा है तू, चल तुझे हंसी की फुल डोज दिलवाता हूँ यार.
9: प्रयोग थिएटर ग्रुप के 50th फेस्टिवल में धुरंधर फेम राकेश बेदी और अनंत महादेवन का प्ले लास्ट ओवर, और साथ में कलरफुल नौटंकी आला अफसर भी है.
16: संडे सितंबर 27th 4 p.m. जोएन मजेस्ट्रो परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर ईस्ट ब्रंसविक. बुक योर सीट्स एट prayogtheatre.com.
17: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
18: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
17: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
19: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
17: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है.
20: एक ही होता है.
17: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
21: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. नंबर 7.

0: तबाही, टाइटल बिल्कुल सही है, लेकिन बॉलीवुड में आजकल एक और चीज की भी काफी तबाही है, एक्टिंग और स्टारडम के बीच का फर्क। क्योंकि स्टार बनना अब मुश्किल नहीं रहा, स्क्रीन पर दिखना भी मुश्किल नहीं रहा, लेकिन किसी एक्टर को देखने के लिए टिकट खरीदने का मन करना वो अलग बात है। और करीना कपूर को दायरा में देखने का मन इसलिए होता है, यू रिमेम्बर चमेली, यू रिमेम्बर युवा, यू रिमेम्बर जब वी मेट, और हाँ, देयर वर सम ओवर द टॉप परफॉर्मेंसेस इन मैं प्रेम की दीवानी हूँ एंड यादें, बट करियर का इंटरेस्टिंग पार्ट ये नहीं होता कि एक्टर फिल्में कितनी करता है, इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है कि वक्त के साथ उनकी एक्टिंग किस डायरेक्शन में जाती है। करीना के केस में मुझे लगता है कि वो अब परफॉर्मेंस को दिखाती कम है, उसे जीती ज्यादा है, और उनकी एक बात सुनना काफी जरूरी है।
1: मैंने हमेशा कहा है कि एक्टिंग मेरे रगों में दौड़ रहा है, मैं एक्टिंग के सिवा तो मैं मुझे कुछ आता ही नहीं है, आई हैव जस्ट बीन बोर्न, एंड ये नहीं है कि बिकॉज मैं इस फैमिली से हूँ, आई थिंक मैं इस फैमिली से अलग हूँ, बिकॉज एक्चुअली मैं पूरी इन्वॉल्व हूँ एक्टिंग में, बाकी फैमिली प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, देयर आर सो मेनी डिफरेंट माय अंकल्स आंट्स एवरीवन, बट मुझे एक्टिंग का इतना शौक है कि आई फील मेरे एक्टिंग का कोई दायरा नहीं है।
0: बस यार यही फर्क है, स्टार पावर तब नहीं होता जब हर जगह आपका चेहरा दिखे, स्टार पावर तब होता है जब आपका नाम सुन के ऑडियंस सोचे यार इस फिल्म को तो देखना बनता है। मेघना गुलजार की दायरा मेरी वॉच लिस्ट में है, राघव जुयाल की फिल्म भाई तेरा स्टार है का गाना आंखों से तूने 2.0 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन कभी कभी फिल्म खत्म हो जाती है, गाना रह जाता है जस्ट लाइक दिस।

0: पर कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है। चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट।

0: grand finale at Entrepreneurs Expo and Funfest on September 27th at Parlor Banquet Edison. Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ
3: I enjoy using inefficient and complex software mama
4: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा
0: अगर आप इनमें से नहीं हैं तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है Zoho One is an all in one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं Yes your entire business Zoho One is easy to use साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है काम अनेक सॉफ्टवेयर एक Zoho One get your free trial at zoho.com/one
5: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा
0: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
0: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन
6: रिश्ते विश्वास से बनते हैं रिश्ते निभाने पड़ते हैं ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स
0: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड इज़लिन न्यू जर्सी
7: किसका है ये
8: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी एक लेजेंड जिसकी मेलेडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
9: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इंक प्राउडली प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर
10: फ्राइडे 11 सितंबर 8:30 पीएम विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ईटस अरेना अटलांटिक सिटी
9: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट टिकट्स अवेलेबल एट टिकटमास्टर एंड saiusainc.com
11: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है तो यूनाइटेड हेल्थकेयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग
12: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन वीक शॉपिंग मॉल के अंदर
11: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज सपोर्ट मिलेगा हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर
13: आरके ज्वेल से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ओनली एट आरके ज्वेल्स इज़लिन बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस
14: लिसनर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा
15: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
16: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot. Number 4.

कुछ फ्रेंचाइजेस को रीबूट करने की जरूरत होती है और कुछ को अपना असली चेहरा याद दिलाने की। There's a film called Race, जिसे आप नहीं भूले और मैं भी नहीं भूला, लेकिन रेस शायद उस दूसरी कैटेगरी में आती है, क्योंकि पहली दो फिल्म्स में गाड़ियां तेज थी, लोग उससे भी ज्यादा तेज थे, लेकिन असली मजा स्पीड का नहीं था, मजा था इंफॉर्मेशन का। आपको कुछ पता है और कैरेक्टर को कुछ और ही पता है, और हर 10 मिनट में फिल्म आपको सडनली बताती थी कि जो आप समझ रहे थे वो बिल्कुल गलत था। एंड देन आई सलमान खान की रेस 3। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ डायरेक्शन या कास्टिंग की नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि रेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो कहीं रास्ते में ही छूट गया, एंड दैट वाज ऑडियंस को डाउट में रखना। अब रेस 4 की बात हो रही है, रीबूट की बात हो रही है, और कास्टिंग पॉसिबिलिटीज काफी इंटरेस्टिंग है। देयर कुड बी आमिर खान, देयर कुड बी टाइगर श्रॉफ, देयर कुड बी सिद्धार्थ मल्होत्रा, विच ऑल्सो मीन्स कि स्केल हो सकता है, एक्शन हो सकता है, बड़े स्टार्स हो सकते हैं, लेकिन असली सवाल अब भी एक ही है, क्या ये रेस होगी या रेस के नाम से एक और एक्शन फिल्म होगी? क्योंकि रेस का मैजिक तभी वापस आएगा जब

0: साथ जीतू राज, only on मिर्ची, it's hot.
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जा

0: पहले हिस्से में शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो, हैं ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमार रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार, 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतुराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
1: साथ जीतुराज। Only on मिर्ची, it's hot.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे 1358 ओकरी रोड, इजलिन।
6: This September 12th and 13th, join us at the Indo-American Community Fair at Shri Krishna Mandir, Morganville.
7: Enjoy delicious Indian food, shopping, live cultural performances, a health fair, kids activities and much more. Morning 10 a.m. to 7 p.m.
8: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
9: RK Jewel se khareediye diamond jewelry, India wale price mein. Aur pay kijiye easy monthly installments mein. Only at RK Jewels Islam. Best quality, best price.
10: छुरा क्यों घोंपे?
11: मत मारे कालीन भैया, बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं।
12: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
13: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
10: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
13: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
14: XL Entertainment presents Mirzapur the movie, releasing worldwide on 4th September at your nearest cinema.
15: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
16: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
15: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
17: Amit Jetley of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour, Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
18: This hour is brought to you by Raj Jewels.
19: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
19: अब मिर्ची खा।
17: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
7: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: नंबर 2।

महीनों से जिस गाने ने इस काउंटडाउन पर अपना बसेरा बनाया हुआ था, आज उसके सामने वक्त ने एक बार फिर एक नया फैसला लिखा है। कैरा हुआ इज ऑन नंबर टू, लेकिन नंबर वन की कहानी सिर्फ एक चार्ट पोजीशन की नहीं है यार, एक पुराना गाना वापस आता है और हमें लगता है कि हम गाना सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम अपनी पुरानी जिंदगी सुन रहे हैं। तेरा मेरा रिश्ता उन्हीं गानों में से 19 साल पहले पहली बार सुना था, लेकिन फिर हम बदले, शहर बदले, लोग बदले, जिंदगी ने अपना साउंडट्रैक बदला, लेकिन वो धुन कहीं नहीं गई। और जब आवारापन 2 ने उसे दोबारा हमारे सामने रखा तो हमने सिर्फ एक पुराना गाना नहीं सुना, हमने देखा कि उस गाने के अंदर हमारा कौन सा वर्जन अभी भी दबा हुआ था, अभी भी जिंदा था। तेरा मेरा रिश्ता ने आवारापन को सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं दिया, उसने फिल्म को एक मेमोरी दी है। और आज वही मेमोरी महीनों पुराने नंबर वन सॉन्ग गहरा हुआ को उसकी जगह से उतार रहा है। इस हफ्ते का नंबर वन सॉन्ग तेरा मेरा रिश्ता कुछ धुने वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बस हम उनमें खुद का एक नया हिस्सा ढूंढ लेते हैं।

0: कुछ गाने हम चूज करते हैं और कुछ गाने पता नहीं कब हमें चूज कर लेते हैं, फिर वो किसी सफर का हिस्सा बन जाते हैं, किसी याद का, किसी ऐसे वक्त का जिसे हम दोबारा जीना भी नहीं चाहते और पूरी तरह भूलना भी नहीं चाहते। शायद इसलिए हम हर हफ्ते यहां लौटते हैं। That's it for this episode of the Mirchi Top 20. Until the next time we meet, this is Suren, over and out.
1: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.